0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से आज की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोत से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के

प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ஆணை போர் மழை அறவோர் கொருமழை அன்பு

0: और बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और ये 13 अगस्त तक चलेगा।
1: Sri Mata Vaishno Devi Shrine Board has temporarily suspended the Vaishno Devi Yatra in view of inclement weather advisory issued by IMD. According to an official update issued by the Shrine Board, the decision has been taken as a precautionary measure to ensure the safety and well-being of pilgrims. Devotees have been advised to remain patient and follow updates issued through the official communication channels of the Shrine Board.
0: और सारा एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा भी पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी और यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। वहीं मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में भारी बारिश की अलर्ट जारी किया है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश हो सकती है, वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हरियाणा पंजाब बिहार उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कल तक बारिश का अनुमान है। और अब बात लेते हैं सीबीएसई कक्षा के परिणाम की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थी। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। सीबीएसई के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% सफल रहे हैं।
1: And now talking of course about FIFA World Cup. Well, अगर हम लोग अपने ही देश की बात करें तो the FIFA frenzy is spread everywhere. And Kolkata, which is affectionately called the football capital of India, it's in the grip of World Cup final fever as fans are gearing up for the high octane final between Argentina and Spain. Streets across the city are draped in the colors of their favorite teams, with giant flags fluttering from rooftops and murals of football legends painted on the walls. The West Bengal government is organizing giant screen, public screenings at various important places and across all state districts to accommodate massive crowds for the late night clash. For many here, it's not just a match. It's a festival of passion, identity and dreams. Let's hear more from our correspondent.
2: Kolkata will stay awake tonight, so will the whole of Bengal. The FIFA World Cup final may be taking place thousands of miles away in New Jersey, but its excitement has reached every home in the state. Even though India is not part of the World Cup, football lovers across Bengal have immersed themselves in the global celebration. Neighborhoods have been decked out in blue and white, and Lionel Messi jerseys are everywhere. The traditional Mohunbagan-East-Bengal rivalry has taken a back seat, as have the political differences. For now, football is the only passion that unites everyone. Defending champion Argentina takes on European champion Spain in what promises to be a thrilling final. The result will be decided on the pitch, but in terms of public support, Argentina clearly enjoys the edge. The West Bengal Sports Department has arranged public screenings of the final at Nandan and the Actara Open Air Stage in Kolkata, besides venues across several districts. Giant screens have also come up at neighborhood clubs, housing complexes and multiplexes. Special food arrangements are being made at various restaurants, while many fans have begun offering prayers and performing rituals for the success of their favorite team. After all, for Bengalis, football remains the greatest of all games, and tonight Bengal will once again be swept away by the magic of the beautiful game. Shondi Bandash Gupta, Akashvani News, Kolkata.
0: वहीं सायरा, फुटबॉल प्रेमियों के लिए भी बहुत ही अच्छी खबर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि शहर भर के रेस्टोरेंट, कैफे और अन्य कई स्थान कल सुबह 4 बजे तक खुले रह सकेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि ये फैसला फुटबॉल प्रेमियों को बड़े मुकाबलों का आनंद लेने का मौका देगा, साथ ही शहर की जीवंत नाइट लाइफ और स्थानीय व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा।
1: Wow, I think it's going to be an amazing night. So, and especially it's a weekend, so most of the people would have probably applied for leaves on Monday, क्योंकि ताकि ऐसा ना हो कि सुबह तक कि हम लोग जो मैच का लुफ्त उठाए फिर कह रहे नहीं आज तो स्कूल नहीं जाना, ऑफिस नहीं जाना। And now making an important announcement that as part of our series People's Padma on Akashvani, in our upcoming episode we will be speaking to our Madhavan. Of course we all know that he's an acclaimed actor and director who has been honored with the prestigious Padma Shri.
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है।

0: और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा. सो आई थिंक इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम रेडी फॉर इट. मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं. जो मेरे पास मौका आता है वो निडर होकर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो मेरी खासियत है बस. बट ये मौका मिलना ऊपर वाले की देना. मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है. एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है, एक एकम्प्लिश्ड इंडिया की, एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए. एंड जब आप ये करोगे होगा ये कि हमारे यंग जनरेशन जो है उनके लिए जो नंबर ऑफ हीरोज हैं, जो नंबर ऑफ आइडल्स हैं, बढ़ जाएंगे और बहुत सारे फील्ड्स में हमें इन्वॉल्व होने का प्रोत्साहन मिलेगा. इस फिल्म ने मुझे जो कुछ सिखाया है वो मैं सिर्फ फिल्मों में नहीं, मैंने अपने निजी जिंदगी में भी अपनाया है, क्योंकि इसके सारे जो मार्गदर्शक थे वो है मिस्टर नंबे नारायण जी, और उनकी कहानी इतनी कमाल की थी, लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं था और वो खुद उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे.
1: I'm sure the listeners are probably wanting to listen to the entire conversation, and for that you need to tune in to Akashvani Gold today at 9:10 AM, and of course you can listen to it on the app also, the News on AIR app, and on the official YouTube channel, that is News on AIR Official. और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुख करेंगे चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के समाचारों का. तो सायरा, सबसे पहले चेन्नई में क्या है खास?
2: वेल, दामराम सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बिगन द सेल्फ एन्यूमरेशन प्रोसेस फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसस ऑफ इंडिया नेक्स्ट ईयर. दामराम कमिश्नर एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर एस बालाचंदर सेड दैट रेजिडेंट्स कैन सबमिट देयर हाउस होल्ड डिटेल्स ऑनलाइन थ्रू द सेंसस पोर्टल फ्रॉम 17th July टू 31st July यूजिंग अ मोबाइल फोन or computer. After submission, they will receive an 11-digit self-enumeration ID via SMS or email, which must be shared with enumerators during the door-to-door survey. The corporation has deployed 1,483 enumerators during the survey. Moving on to the city of Bengaluru. Well, the second phase of the Greater Bengaluru Authority's footpath clearance drive commenced with the removal of abandoned vehicles from city streets. Greater Bengaluru Development Minister Krishna Bhaira Gowda flagged off the drive in Malleswaram. The five city corporations, in coordination with the Bengaluru Traffic Police, are removing abandoned vehicles from roads and footpaths to improve pedestrian infrastructure. According to GBA, more than 4,200 abandoned vehicles have been identified across the city, with notices already issued to over 1,000 vehicle owners. The minister said that abandoned vehicles obstruct pedestrian movement and that the drive will continue across Bengaluru, with citizens encouraged to report such vehicles through the Astram application. Another news coming in from Bengaluru, and of course we all know that the football frenzy is no less in Bengaluru. Well, Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar will be joining football enthusiasts for public live screenings of the 2026 FIFA World Cup final between Argentina and Spain at the NGV Indoor Stadium in Koramangala, Bengaluru, in early hours of Monday. The live screening has been jointly organized by the Karnataka State Football Association and the Department of Youth Empowerment and Sports. The match will be telecast from 12:30 AM on Monday, that is of course tonight, and with sportspersons, dignitaries and members of the public expected to attend the event alongside the Chief Minister. According to organizers, the screening has been arranged to celebrate the global football spectacle and encourage greater public interest in the sport. Moving on to Hyderabad, the Twin Cities celebrated a historic sporting milestone as the closing ceremony of the inaugural ILCA Open India International Sailing Championship and the YAI 40th Hyderabad Sailing Week 2026 concluded at the Hussain Sagar Lake. Lieutenant General Neeraj Varshney, Commandant of the Military College of Electronics and Mechanical Engineering and Commodore of the EME Sailing Association, presided over the event and felicitated the winners. Reflecting on the landmark event, General Varshney stated that hosting India's first international ILCA Open Championship fulfilled a grand vision for Hussain Sagar, while reaffirming EMESA's four-decade legacy of nurturing Olympians and Arjuna awardees. He emphasized that sailing instills vital life lessons in discipline and leadership, urging the athletes to pursue new horizons with courage and determination. So Farhad, this was the buzz that I had from these three cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the latest that you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
3: जी, सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं. दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को सशक्त बनाने के लिए 2008

0: 400 नई एसी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत ये शून्य उत्सर्जन बसें अगले वर्ष अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। वहीं महाराष्ट्र का रुख करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकियों को और एआई को बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण राज्य में एग्री हैकाथॉन के रूप में राज्यव्यापी योजना को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों की चुनौतियों का समाधान खोजना है। और वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल पुणे क्षेत्र में यातायात जाम कम करने और कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राजमार्ग और अवसंरचना परियोजनाओं की घोषणा की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पुणे को एक ही स्तंभ पर सड़क, फ्लाईओवर और मेट्रो लाइन वाली पहली त्रिस्तरीय परिवहन संरचना मिलेगी। और अब कोलकाता का रुख कर लेते हैं। गृहमंत्री आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसके बाद कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में विश्व संग्रहालय का उद्घाटन होगा। वे कोलकाता के बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम से हावड़ा जिले के संक्रराइल फूड पार्क में अमूल डेयरी की विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने की सुविधा की आधारशिला रखेंगे। और श्रोताओं, अब है बारी महानगरों के मौसम का हाल जानने की। तो सारा, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि मॉनसून का तो मौसम आ गया है, लेकिन उमस कम नहीं हो रही है। मॉनसून है लेकिन बारिश नहीं है।
1: राइट, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट एल नीनो इफेक्ट प्रॉब्ली इज नाउ शोइंग एवरीवेयर।
0: जी,
1: तो बादल आते हैं लेकिन वही है ना कि जो गरज के रह जाते पर बरसते
0: नहीं है। लेकिन आज हो सकता है बादल बरस जाए दिल्ली में, क्योंकि मौसम विभाग ने आज अनुमान व्यक्त किया है। और न्यूनतम तापमान में भी जो है वो गिरावट महसूस की गई है, 29 डिग्री सेल्सियस, और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेकिन मुंबई में भी मौसम अच्छा रहेगा, वहां पर भी बारिश हो रही है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं कोलकाता में आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: एंड ऑल द अदर सिटीज इन साउथर्न इंडिया, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद विल हैव सम रेन टुडे, अनलाइक दिल्ली। और आप कह रही हैं आज शायद दिल्ली में भी हो जाए बरसात, होपफुली। वेल, चेन्नई विल हैव अ पार्टी क्लाउडी स्काई एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। टेम्परेचर इन चेन्नई विल हॉवर बिटवीन 28 एंड 38 डिग्री सेल्सियस, वेल बेंगलुरु विल हैव अ क्लाउडी स्काई एंड सम लाइट रेन इज एक्सपेक्टेड देयर। मिनिमम टेम्परेचर वॉज 21 वेल मैक्सिमम विल बी अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस। हैदराबाद विल हैव अ क्लाउडी स्काई टुडे एंड लाइट रेन और ड्रिजल इज एक्सपेक्टेड ओवर देयर। टेम्परेचर इन हैदराबाद विल हॉवर बिटवीन 24 एंड 32 डिग्री सेल्सियस।
0: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज है 19 जुलाई 2026।
1: Yes, and let's look at the important events. Well, in the year 1900, the Paris Metro was started with the initial section connecting Porte de Vincennes to Porte Melo.
0: 1848 में अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के सेनेका फॉल्स में महिलाओं के अधिकारों पर पहला ऐतिहासिक सम्मेलन आज के दिन आयोजित हुआ था।
1: And let's take our listeners way back to the year 1553. Only a 15-year-old princess, Lady Jane Grey, was deposed as the Queen of England after only 9 days in favor of her cousin Mary. Also on this day in 1903, the first Tour de France bicycle race concluded with Maurice Garin winning the race.
0: 1905 में भारत के तत्कालीन वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को मंजूरी आज के दिन दी थी।
1: On this day, 1942, the agricultural chemist George Washington Carver arrived in Michigan at the invitation of Henry Ford, the founder of the Ford Motor Company, to begin an experimental project. Also, on this day, 1969, Apollo 11 reached orbit around the moon with astronauts Neil Armstrong, Buzz Aldrin, and Michael Collins.
0: और 1969 में आज के दिन देश के 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
1: And on this day, 1980, the Moscow Summer Olympics began following a boycott from dozens of nations that were boycotting the games because of Soviet military intervention in Afghanistan. And now when we remember some of the personalities for us, so who is the first on our list?
0: जी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मलयालम भाषा की प्रसिद्ध कवित्री नालापत बालमणि अम्मा की। वे महादेवी वर्मा की समकालीन थी, जो हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक थी। नालापत बालमणि अम्मा की गणना 20वीं शताब्दी की चर्चित और प्रतिष्ठित मलयालम कवित्रियों में से की जाती है। उनकी रचनाएं अनुभूति मंडल का साक्षात्कार कराती हैं। उन्होंने 500 से अधिक कविताएं लिखी हैं और उनका बहुत ही अच्छी कविता है आलस्य, जिसका हिंदी अनुवाद किया है रति सक्सेना ने। वो कहती

0: आलस्य मुझ में फैलता है शाश्वत आनंद की छाया जैसे। यहाँ अभी है कर्तव्य अपार, कोशिश करती हूँ अपनी यादों से छुटकारा न पाने की। धरती को बिना श्रम मृदुलता से ढकने वाले फूलों के बीच, जीवन को सुंदरता देने वाली अकृत्रिम कल्पनाओं के बीच, कर्म कृषि में मेहनत करने वाले मेरे हाथ बिना हिले डुले पड़े रहते हैं।
1: And well, we all know that Balamani Amma, she was also the mother of renowned writer Kamala Das, and she won many awards and honors, including the Padma Bhushan, Saraswati Samman, Sahitya Akademi Award, and of course many other awards as well. Next on our list for Rahte Hain, another writer, novelist, Balai Chand Mukhopadhyay, who is best known by his name Banphool. And of course, he is overspanned novels, poetry, plays, essays, and over 400 short stories, the genre for which he is best remembered. For his contribution to literature, he was awarded the Padma Bhushan in 1975.
0: और आज ही के दिन जन्म हुआ था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन के महान नेता और साहित्यकार खूबचंद बघेल का। वे विधायक और राज्यसभा के सांसद भी रहे। डॉक्टर खूबचंद बघेल का हमेशा से सामाजिक कुरीतियों को देखकर खून खौलता था। इन्होंने हमेशा उन बुराइयों को समाज से दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें अनेकों बार समाज के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। 1946 में उनको तहसील कार्यालय कार्यकारिणी के अध्यक्ष और प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था।
1: Today is the birthday of a very, very popular actor, especially in Telugu cinema. We are talking about Rajendra Prasad. He made his debut in the year 1977 with the film Sneham and gained recognition with Manchu Palaki, which came in 1982. He then went on to star in several successful comedy films such as Lady's Tailor and Appulu Appa Rao, among others. Of course, he received the Nandi Award for Best Actor for Era Mandaram. We have a song from one of his films.

0: The kids are amazing.
1: We're going to the beach.
2: Right, don't drown.
0: Ivy, it's a monster success.
3: Would you do a photo shoot for New York Magazine?
4: Nude?
3: I don't think so.
4: Oh, I'll do it anyway.
5: But you are still a failure.
6: You got fired.
7: Fired?
3: Shh.
7: I sense trouble.
6: How was your day?
0: The neighbor's dog shat in the laundry. The kids have got knit together. My left eye's twitching.
6: More champagne for me, please.
7: If you need a shoulder or an inner thigh to lean on.
3: Huh?
7: I'm kidding.
8: और श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं हिंदी साहित्यकार, शिक्षक और कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक और फिल्मों के गीत लेखक गोपालदास सक्सेना यानी नीरज को। गोपालदास नीरज ने अपनी कविताओं, गजलों और फिल्मी गीतों में प्रेम, विरह, प्रकृति और जीवन के तमाम रंग शामिल किए। उन्हें पद्मश्री और फिर पद्म भूषण सम्मान मिला। फिल्मी गीतों के लिए उन्हें लगातार 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। 1971 में आई फिल्म शर्मीली, इसका एक गाना था आज मदहोश हुआ जाए, काफी लोकप्रिय रहा। नीरज के लिखे गीत पर एसडी बर्मन ने म्यूजिक दिया। गाना राखी और शशि कपूर पर फिल्माया गया, जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया।
1: आज

1970 में देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी आई थी। इसमें नीरज का लिखा एक गीत था फूलों के कलम से दिल की कलम से। एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में ये गीत गाया गया।

0: What a beautiful song, isn't it? And Gopal Das Neeraj ki kuch panktiyan jo bahut famous hai. Ab to mazhab koi aisa bhi chalaya jaye jisme insaan ko insaan banaya jaye, jiski khushboo se mehak jaye padosi ka bhi ghar, phool is qism ka har simt khilaya jaye.
1: Bahut khoob. और सारा उन्हीं की आवाज में हमने एक उनकी कविता निकाली है, आइए सुन लेते हैं.
2: आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है कवि होना सौभाग्य. रुके नहीं कोई यहाँ नामी हो के नाम, रुके नहीं कोई यहाँ नामी हो के नाम, कोई जाए सुबह को कोई जाए शाम.
1: बहुत खूब, यानी कवि का किस तरीके से उन्होंने वर्णन किया है वो इसमें देखने को मिल जाता है. और आज की शाम अगर आप अपनी बनाना चाहते हैं तो इंडिया हैबिटेट सेंटर में ज़रूर जाएं, नृत्य प्रस्तुति का आयोजन होगा. और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सुबह 10 बजे होगा प्रदर्शनी कार्यकारी बाजार का आनंद.
0: एंड फॉर दैट दीजिए इजाजत फरहत और सायरा को.
1: नमस्कार.
3: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है. तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं.
4: जल है तो हम है. आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं. इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार. संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज. राष्ट्रीय परीक्षा

0: एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश। फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने। इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
4: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।

0: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और भ्रम युगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है नई पीढ़ी में गोल्ड की इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। The headlines. Government convenes all-party meeting today ahead of monsoon session of parliament beginning tomorrow. National Testing Agency warns students and parents against submitting fake or AI-generated OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Shri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third place match to

0: peaks in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
1: திரைகணத்தில் அடுத்து பாரதிய சேனா.
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता

0: एक नागरिक को ये गीत समर्पित है, हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: நேயர்களே, உங்கள் நினைவிற்கு இன்று பிற்பகல் 1:10 ஆர் கோகுலகிருஷ்ணன் அவர்களின் வயலின் இசை கேட்கலாம். பி சத்யஜெய்வ் அவர்கள், மிருதங்கம். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गई हैं। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सेंडू से मुलाकात करेंगी और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और भारत मोल्दोवा संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। मोल्दोवा में ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। इसके बाद राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया के लिए रवाना होंगे। ये भी किसी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया पहुंचेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति की यात्रा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जांजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिनवेई भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और भविष्य में सहयोग के नए विकल्पों पर बातचीत करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेंगे। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। केंद्रीय माध्यमिक

0: परीक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और एस्टोनिया के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। एस्टोनिया उन्होंने दोनों देशों के इस कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपति और व्यापार प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी,
2: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव भी हो सकता है। खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both the Houses of Parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency NTA has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency revealed that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or AI generated. The NTA stated that it is actively scrutinizing every complaint received. However, it cautioned that submitting counterfeit or AI-generated OMR sheets could lead to serious legal consequences for the complainants. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has declared the results of the Class 10 Second Board Examination 2026. Students can access their results through DigiLocker Results Portal. In line with the recommendations of the National Education Policy, CBSE had introduced two board exams for Class 10 from this year. The main board exam was conducted from 17th February to 11th of March, followed by the second board exam from 15th May to 21st May this year. President Draupadi Murmu has embarked on a three-nation state visit to

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और जंजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली वायनई के बीच वार्ता आज नई दिल्ली में। अमेरिका ने जॉर्डन में ईरानी हमले में अपने दो सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान पर फिर हवाई हमले किए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज लॉर्ड्स में और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, फ्रांस को हराकर इंग्लैंड तीसरे स्थान पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर आज रवाना हो गई। एक रिपोर्ट।
1: तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। वे वहां मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू से मुलाकात करेंगी। श्रीमती मुर्मू मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसो से भी मुलाकात करेंगी और भारत मोल्दोवा संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। मोल्दोवा में ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। इसके बाद राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। वहां वो राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा, प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मेकोस्की और संसद अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। वो उत्तरी मैसेडोनिया की संसद को संबोधित करने के साथ ही भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया पहुंचेंगी। वहां वो राष्ट्रपति निकोसुर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान और अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। वो भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति की यात्रा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत

0: मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष हुसैन अली वायनई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भेंट करेंगे। इस दौरान दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली आज विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विकासशील देशों के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। श्री वास्केज कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और पनामा के बीच संबंध साझा मूल्यों, पारस्परिक हितों और सद्भावना पर आधारित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।
2: इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
3: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
1: श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्योगों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान के विरुद्ध नए हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई ईरान के हमलों में जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में की गई है। एक रिपोर्ट।
4: ये हमला जॉर्डन में हुए हमले के जवाब में किया गया, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, 1 सैनिक लापता है और 4 अन्य घायल हुए हैं। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि इन हमलों का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल टैंकरों के आवागमन को अवरुद्ध करने की ईरान की क्षमता को नुकसान पहुंचाना है। इस बीच ईरान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबी वादा ने कहा कि ईरान ने अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित इस्लामाबाद समझौते ज्ञापन के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धताओं को निलंबित कर दिया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीश।
1: इससे पहले ईरान ने कल कुवैत पर कई हवाई हमले किए। इन हमलों में देश के बिजली और जल शोधन ढांचे के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं।
5: ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने अपने ऑपरेशन नस्त्र 2 के 18वें चरण के तहत कुवैत स्थित अरिफजान ग्राउंड फोर्सेज सपोर्ट सेंटर को निशाना बनाया। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि इस हमले में वहां तैनात कई अमरीकी सैनिक मारे गए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने यह भी दावा किया कि उसने अमरीकी अली अल सलीम एयरबेस पर रडार प्रतिष्ठान को ड्रोन से निशाना बनाया। इसके अलावा उसने कुवैत के अल अहमदी बंदरगाह स्थित अमेरिकी नौसेना के ईंधन सहायता केंद्र और संचार केंद्र पर ड्रोन तथा मिसाइल हमले किए। इन हमलों का असर आवश्यक सेवाओं पर भी पड़ा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को यात्रा संबंधी परामर्श जारी किए हैं। विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में अमेरिका के नागरिकों, विशेष रूप से पश्चिम एशिया क्षेत्र में रहने वालों को अधिक सतर्क रहने और सुरक्षा संबंधी परामर्शों से अवगत रहने को कहा। विभाग ने कहा कि क्षेत्रीय तनावों के कारण विमानन गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, इससे उड़ानें रद्द हो सकती हैं। पाकिस्तान पुलिस ने लाहौर में 121 अफगान नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनमें से 28 लोगों के पास वैध दस्तावेज मिलने पर उन्हें रिहा कर दिया गया। शेष 93 लोगों को लाहौर के एक हिरासत केंद्र

0: में भेज दिया गया।
1: पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि यह कार्रवाई पाकिस्तान के देशव्यापी अभियान का हिस्सा है। इस्लामाबाद ने 2023 के आखिर से अब तक लाखों अफगान नागरिकों को वापस भेजा है। इस महीने की शुरुआत में बिना दस्तावेज वाले अफगान नागरिकों की वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद यह कार्रवाई और तेज कर दी गई। उधर संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान को जबरदस्ती वापस भेजने की कार्रवाई रोकने की चेतावनी दी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष नवीन सक्सेना।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मायामी में खेले गए एक मैच में फ्रांस को इंग्लैंड ने 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह है।
2: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: पीवी सिंधु ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को हराया और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन में लॉर्ड्स में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और जंजीबार के राष्ट्रपति हुसैन अली वायनई के बीच वार्ता आज नई दिल्ली में। अमेरिका ने जॉर्डन में ईरानी हमले में अपने 2 सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान पर फिर हवाई हमले किए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से, फ्रांस को हराकर इंग्लैंड तीसरे स्थान पर। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu leaves on a 3-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania. Vice President C.P. Radhakrishnan to hold talks with President of Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi in New Delhi today. U.S. military launches new airstrikes in retaliation to Iranian strikes that killed 2 American troops in Jordan. India to take on England in series decider third ODI at Lord's in London this afternoon. And in FIFA World Cup, Argentina to take on Spain in final tonight. England beat France to secure third place. President Draupadi Murmu has embarked on a 3-nation state visit to Moldova, North Macedonia and Romania. A report.
4: On the first leg of her visit, the President will reach Moldova tomorrow, where she will meet and hold delegation-level talks with her Moldovan counterpart, Maia Sandu. President Murmu will also meet the President of the Parliament of Moldova, Igor Grosu, and will interact with members of the Moldova-India Parliamentary Friendship Group. Further, the President will address a business forum and interact with the members of the Indian community. This is the first ever visit by an Indian President to Moldova. After concluding her visit to Moldova, the President in the second leg of her visit will reach North Macedonia on Tuesday. This will also be the first ever visit by an Indian president to North Macedonia. During the visit, the president will hold bilateral talks with her counterpart Gordana Slijanovska Davkova and also meet the Prime Minister Hristijan Mikoski and the president of the assembly. The president is also scheduled to address the assembly of North Macedonia. Further, the president will address India-North Macedonia Business Forum on the final

0: சுகுமான ராகங்கள் கேட்டீர்கள். தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முனீஷ் சர்மா. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गईं। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वो राष्ट्रपति माया सेंडू से मुलाकात करेंगी और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वो मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी और भारत मोल्दोवा संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। मोल्दोवा में ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। इसके बाद राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, ये भी किसी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली यात्रा रहेगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया पहुंचेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति की ये यात्रा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। जंजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिविनी भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वे आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। बैठक के दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के समूचे दायरे की समीक्षा करेंगे और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भी आज जंजीबार के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से ये अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं और दोनों ही परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस साल 96.78% छात्र सफल रहे हैं।

0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और एस्टोनिया के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया है। एस्टोनिया में दोनों देशों के इस कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपतियों और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी,
2: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
1: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्योगों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना होगा स्पेन से। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. President Draupadi Murmu has embarked on a three-nation state visit to Moldova, North Macedonia and Romania today. On the first leg of her visit, the President will reach Moldova tomorrow, where she will meet and hold delegation-level talks with her Moldovan counterpart Maia Sandu. President Murmu will also meet the President of Parliament of Moldova, Igor Grosu, and will interact with the members of the Moldova-India Parliamentary Friendship Group. Further, the President will address a business forum and interact with the members of the Indian community. This is the first ever visit by an Indian President to Moldova. President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, who is on a four-day official visit to India, will meet Vice President C.P. Radhakrishnan in New Delhi today. Zanzibar is a semi-autonomous region of Tanzania. It has its own constitution, president, House of Representatives and flag. During the meeting, both leaders will review the entire spectrum of India-Tanzania relations and explore new avenues for future cooperation. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will also call on the visiting dignitary today. The MEA said that as partners in the Global South, India and Tanzania share long-standing close ties of friendship and cooperation across a wide range of sectors. It added that the visit is expected to provide a fresh impetus to further strengthening bilateral relations for mutual benefit. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency, NTA, has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency revealed that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated, prompting closer monitoring of all complaints. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has declared the results of the Class 10 Second Board Examination 2026. Students can access their results through DigiLocker Results Portal, in line with the recommendations of the National Education

ஜனன மரண பயஹாரே.

சங்கச்சக்கரதர துஷ்ட தைத்யஹர சர்வலோக சரணா.

देवा भक्तवर्यमिह भूरिकर्णया पाहि भारतीतीर्थं भक्तवर्यमिह भूरिकर्णया पाहि भारतीतीर्थं पाहि भारतीतीर्थं मम

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முனீஷ் ஷர்மா. संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हुई. बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं. बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं. बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया. मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, माकपा नेता जॉन ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा सहित विपक्ष के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो गए. मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है. इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है. संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई. यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा पहुंचेंगी. किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा होगी. यात्रा के दौरान वे मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी. वे मॉल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी. इसके अलावा राष्ट्रपति मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी. वे भारत मॉल्दोवा व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी. यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी. किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा होगी. इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्यानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी. वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी. राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी. तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी. दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में संयुक्त गणराज्य तंजानिया के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुबिनी से मुलाकात की. डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों ही नेताओं ने उच्च शिक्षा, क्षमता निर्माण, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, एआई, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भारत तंजानिया सहयोग के विस्तार पर चर्चा की. जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई. आज सुबह बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भर गया. इस वजह से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा. हमारे संवाददाता ने बताया कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैल गई. स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं. मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से

रहते इस बारिश की संभावना व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
1: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए।

0: जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01991295681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविने ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा

0: मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
1: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने तीन बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने दो वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में NCPI को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: நேரம் இப்பொழுது 2:30.

0: நிறைவு பெற்றது திரைகானம். எஃப்எம் கோல்ட் அலைவரிசையில் இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सरकार ने आज सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित रहे। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने NCPI को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हुए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट NCPI को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। NCPI हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल हैं। संसद का मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वो संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वो इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान दें।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग

0: चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी तथा विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज सुबह बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सुबह तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हैं। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सुरनकोट तहसील में हुई हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मंगल पांडे ने मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत और इंग्लैंड के बीच 3रा और निर्णायक एक दिवसीय मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 7 ओवर में बिना किसी नुकसान के 48 रन बना लिए हैं। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. The government today convened an all-party meeting at Parliament House Annex ahead of the monsoon session of the Parliament beginning tomorrow. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju and Leader of the House in Rajya Sabha Jagat Prakash Nadda. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan were also present in the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues. He stressed that meaningful debate rather than disruptions is essential for strengthening democracy.
3: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the business advisory committee.
2: Earlier, just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in state assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. President Draupadi Murmu embarked on a 3-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania today. The visit to the 3 European countries is expected to provide fresh momentum to India's bilateral ties with the 3 countries, with a focus on expanding cooperation in trade, investment, technology, innovation, education and people-to-people exchanges. President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, met Vice President

0: और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत, भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: vpuat.in को यदि आप देखेंगे तो उस पर भी ये तमाम जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए आप सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 9429426467। अंतिम तिथि है आवेदन की 3 अगस्त 2026। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। चिकित्सा अधीक्षक, अधीक्षण अभियंता, मुख्य नर्सिंग अधिकारी, वरिष्ठ विश्लेषक, मुख्य चिकित्सा सामाजिक सेवा अधिकारी, केंद्रीय निष्कीटीकरण एवं आपूर्ति विभाग अधिकारी, अस्पताल वास्तुविद, उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, नर्सिंग अधीक्षक, वरिष्ठ क्रय एवं भंडार अधिकारी, वरिष्ठ प्रोग्रामर, प्रधान निजी सचिव, मुख्य चिकित्सा अभिलेख अधिकारी, भंडार अधिकारी तथा सुरक्षा अधिकारी। आवेदन का फॉर्मेट और अन्य विवरण के लिए संस्थान की वेबसाइट देख सकते हैं आप। वेबसाइट है www.aimsbhopal.edu.in। बसु विज्ञान मंदिर कोलकाता एक पद के लिए ऑडिट एंड फाइनेंस ऑफिसर की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। ये भर्ती डेपुटेशन के आधार पर है जिसमें पे लेवल 10 रहेगा तथा पद की अवधि 3 वर्ष है। विस्तृत रिक्ति विज्ञापन, आवेदन प्रक्रिया, नियम और शर्तों तथा अन्य निर्देशों के लिए कृपया देखिए वेबसाइट www.jcbose.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी उत्तर प्रदेश आमंत्रित कर रहा है विमान अनुरक्षण अभियंता के एक पद के लिए अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट igrua.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: सुन रहे हैं अपना अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन पर कार्यक्रम परिक्रमा। अगले आधे घंटे में होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर, क्षेत्रीय संवाददाताओं से खास जानकारी, खेल जगत की प्रमुख गतिविधियां और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों का स्मरण जिनकी आज जयंती, जन्मदिन या पुण्यतिथि है। तो आइए शुरू करते हैं आज की परिक्रमा। मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शगुन चोपड़ा। हेलो शगुन।
1: हेलो वैष्णवी,
0: कैसी हैं आप और बताइए आज क्या क्या रहने वाला है कार्यक्रम में?
1: वेल, आई एम डूइंग वेरी वेल एंड टुडे वेल द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल इज फाइनली हियर एंड फुटबॉल फीवर इज इन द एयर एंड इट इज वेरी रियल। वेल दैट राइम्ड। सो द एक्साइटमेंट हैज स्पिल्ड ऑन टू द स्ट्रीट्स। इट्स ऑल अबाउट फीफा टुडे एंड द फुटबॉल वर्ल्ड कप। सो देयर विल बी पब्लिक व्यूइंग, स्पेशल फैन जोन्स एंड मिडनाइट स्क्रीनिंग्स एज वेल एंड इट हैज ड्रॉन मैसिव क्राउड्स। So today it's all about that, along with, well, if we focus and turn our attention to our program, it will be, of course, full of excitement and the stuff which we have lined up for our listeners, selection of news, our discussion segment, Dateline India. Well, we are discussing a very potent topic today and reports and capsules which we have lined up for you and tributes as well. And all of this over the next 30 minutes with me, Shagun Chopra and Vaishnavi. And first listeners, we will begin with the headlines. So let's begin.
0: संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने

0: सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया।
1: पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू सीक्स कोऑपरेशन ऑफ ऑल पार्टीज फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ पार्लियामेंट।
0: जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा, बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया।
1: प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एम्बार्क्स ऑन अ 3-नेशन विजिट टू मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया एंड रोमानिया।
0: बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया।
1: एंड इन द फुटबॉल फीवर, इट पीक्स वर्ल्ड वाइड एज अर्जेंटीना एंड स्पेन गियर अप फॉर अ शोडाउन इन फीफा वर्ल्ड कप फाइनल टुनाइट। So listeners, this is our discussion segment, Dateline India, and we'll focus all our attention to this topic. The topic being modified Udaan scheme. So we'll give you in-depth knowledge and details about it. So connectivity has long been the backbone of economic progress. We all know that. And linking production to markets and people to opportunity. So the ability to move quickly and reliably, it has become essential to sustaining growth, reliable and the ability to move quickly. And in this particular evolving landscape, aviation has emerged as a powerful pillar of speed, access and reach. And for generations, this connectivity did not reach everyone equally. So air travel in India was largely concentrated in a handful of major cities. Many smaller towns, they lacked regular air services. And this gap highlighted the growing need to extend the benefits of air connectivity beyond metropolitan centers. And more regions, they needed to be integrated into the national aviation map, right?
0: जी शगुन, सबको साथ लेकर चलने वाली और व्यापक हवाई कनेक्टिविटी की जरूरत को देखते हुए अक्टूबर 2016 में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी RCS उड़ान स्कीम को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य था आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा को सस्ता, आसान और अधिक सुलभ बनाना। अब श्रोताओं जरा सोचिए कि जिन क्षेत्रों में पहले हवाई सेवाएं बहुत कम थी या बिल्कुल नहीं थी, वहां भी अब हवाई संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। यही बदलाव उड़ान योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन चुका है। इस विकास में उड़ान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
1: Exactly, Vaishnavi. And building on this, the modified Udaan scheme, this was launched on 4th of July 2026. This marks another transformation in India's aviation journey. The scheme is being implemented over a period of 10 years, from 2026-27 to 2035-36, the financial year, with a total outlay of 28,840 crore rupees. And this new phase, it places greater emphasis on expanding airport infrastructure, second, improving operational support, third, creating a viable ecosystem for airline operators serving smaller markets. It also seeks to consolidate earlier gains and address emerging demands.
0: शगुन, सिर्फ नए हवाई रूट शुरू कर देना ही कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि इसके लिए मजबूत आधारभूत संरचना, भरोसेमंद ऑपरेशनल सिस्टम और छोटे शहरों में काम करने वाली एयरलाइनों के लिए प्रभावी सहयोग भी जरूरी है। भारत के कई क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण है। ऐसे इलाकों में विशेष प्रकार के एयरक्राफ्ट, हेलीपैड और बेहतर संचालन व्यवस्था ही लोगों तक आवश्यक सेवाएं पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम बनती है। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मॉडिफाइड उड़ान स्कीम में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो क्षेत्रीय विमानन को लंबे समय तक टिकाऊ, मजबूत और अधिक प्रभावी बनाने पर केंद्रित है।
1: That's true. And now we'll talk about the development of aerodromes, which is a central pillar of the modified Udaan scheme, the aerodromes. Well, under this component, 100 airports will be developed from existing unserved airstrips to expand aviation infrastructure across the country. And this initiative seeks to integrate smaller towns and remote regions more effectively into the national transportation network. The sustainability of smaller aerodromes, it depends on continued operations. So the modified Udaan scheme provides structured operation and maintenance support as well.
0: जी, और देश के कई हिस्सों में अगर हम देखें तो भौगोलिक चुनौतियों के कारण पारंपरिक एयरपोर्ट बनाना हमेशा संभव नहीं होता है। ऐसे क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी अंतिम छोर तक संपर्क सुनिश्चित करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शगुन, इसी उद्देश्य से मॉडिफाइड उड़ान स्कीम के योजना के अंतर्गत कनेक्टिविटी से वंचित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित

0: करने का प्रस्ताव है। इन सुविधाओं से न केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक तेज पहुंच संभव होगी बल्कि आपातकालीन राहत एवं बचाव कार्यों को गति मिलेगी।
1: And the modified Udaan scheme incorporates a strong focus on strengthening indigenous aviation capacity under the Atmanirbhar Bharat initiative. And one of the operational challenges has been the limited availability of small fixed wing aircraft and helicopters suited for operations in remote and difficult terrain. The scheme proposes two HAL Dhruv helicopters or HAL Dhruv helicopter for Pawan Hans and two HAL Dornier aircraft for अलायंस एयर। टू न्यू हेलीकॉप्टर्स
0: जी। अब शगुन ये सब तो हमने बात ही कर ली, अब देखते हैं कि आखिर उड़ान स्कीम के बाद क्या कुछ परिणाम आगे निकल करके आए हैं।
1: लेट्स बिगिन विद दैट।
0: तो श्रोताओं, उड़ान योजना के लागू होने के 9 वर्षों से अधिक समय में इसके उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं। 15 जुलाई 2026 तक देश भर में 679 हवाई रूट, 95 एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रोम को आपस में जोड़ चुके हैं। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ दूरदराज पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्रों को मिला है। तेजपुर, पासीघाट, दीव, पिथौरागढ़, राउरकेला और ऐसे अनेक क्षेत्रों में लोगों के लिए हवाई यात्रा पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और सुलभ हुई है।
1: ऑल्सो air travel anyway reduces travel time and Udaan has significantly reduced travel time between different cities. One such example is the air route connecting Vijayawada and Kadapa. And well, what was once a long and time-consuming journey can now be completed in about an hour. Just an hour by air. And this actually demonstrates the tangible benefits of improved regional connectivity.
0: बिल्कुल। और दुनिया के बड़ी देशों जैसे कि अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जो क्षेत्रीय हवाई सेवाओं को बनाए रखने के लिए सरकारी वित्तीय सहायता पर निर्भर रहते हैं। भारत ने इस दिशा में एक अलग और अभिनव मॉडल अपनाया। उड़ान योजना के अंतर्गत RCS लेवी मैकेनिज्म के माध्यम से क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के लिए आवश्यक फंडिंग एविएशन सेक्टर के भीतर ही जुटाई जाती है। इसके लिए घरेलू उड़ानों की कुछ चुनिंदा श्रेणियों पर एक छोटा सा शुल्क लगाया जाता है। ये व्यवस्था क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को निरंतर और टिकाऊ आधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शगुन, ये सब बातों से मुझे लगता है कि उड़ान से लेकर मॉडिफाइड उड़ान तक का ये सफर हमें दिखाता है कि भारत की हवाई कनेक्टिविटी लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है।
1: That is very true, and the journey from Udaan to modified Udaan reflects India's sustained commitment to building an inclusive and resilient aviation network. So it we have gathered here that it connects regions, supports economic activity as well, and thereby improves everyday mobility for citizens. We were talking about difficult terrains as well, reducing travel times between cities. And over 9 years, Udaan has transformed regional aviation across India. So hundreds of routes, they now connect previously underserved locations, and air travel has therefore become accessible to millions.
0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है। गोवा के फिल्म युवा फिल्मकार आदित्य सुहास जांबले की फिल्म आर्टिकल 370 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये उपलब्धि न केवल आदित्य जांबले बल्कि पूरी गोवा के लिए एक गर्व का विषय है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सहित गोवा और भारतीय फिल्म जगत की कई हस्तियों ने उन्हें बधाई दी है। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: आदित्य सुहास जांबले की फिल्म आर्टिकल 370 वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। अपनी सशक्त कहानी और प्रभावशाली निर्देशन के कारण इस फिल्म को देश भर में सराहना मिली। अब इसे 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान मिला है। यह आदित्य जांबले का तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसके पहले उन्हें आबा एकतायना के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गैर फीचर फिल्म और खरवस के लिए सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। आइए सुनते हैं इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा के बारे में उन्होंने क्या कहा।
3: 5 अगस्त 2019 को जो डिसीजन लिया गया था, आज भी मैं मानता हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट डेज इन माय लाइफ पर्सनली एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। एक भारतीय होने के नाते बहुत अच्छा लगा जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट होके कश्मीर भारत का भाग बन गया, पूरा का पूरा एक भारत एकजुट हो गया। तो वो कथा, उसके पीछे कैसी चीजें हुई, एनआईए ने क्या सेक्रीफाइसेस किए, सीआरपीएफ ने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए, ये सब कहना बहुत ही जरूरी था। और वो पॉलिटिक्स भी दिखाना बहुत ही जरूरी था विदाउट शाइंग अवे फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन। हमने सारी चीजें रिसर्च बैक्ड कर दी थी और उसके बाद जो हुआ, उसके बाद जो बॉक्स ऑफिस जो प्रशंसा मिली, जिस तरीके से प्यार मिला, जिस तरीके से 100 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया फिल्म ने, ये बहुत ही बड़ी चीज होगी मेरे लिए बतौर एक डायरेक्टर।
2: राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित यह फिल्म

0: एक बार फिर साबित करती है कि मजबूत कहानी और संवेदनशील निर्देशन दर्शकों के दिल तक अपनी जगह बना सकते हैं। आदित्य जांभले की यह सफलता न सिर्फ उनके फिल्मी करियर का अहम पड़ाव है, बल्कि गोवा के उभरते फिल्म जगत के लिए भी गर्व और प्रेरणा का विषय है। परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: So from Goa, now we'll head to Bengaluru, where Indian Standard Time, IST, has entered a new era with the launch of an indigenous time dissemination network based on White Rabbit technology in Bengaluru, of course. The initiative is aimed at establishing a uniform, highly accurate and secure national time standard while reducing India's dependence on foreign time sources such as GPS. And the project has been launched under the vision of One Nation, One Time. Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Technology, Energy, I beg your pardon, Shri Prahlad Joshi inaugurated the Indian Standard Time Dissemination Demonstration Network, Indian Standard Time Dissemination.

0: One Nation, One Time. Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Renewable Energy, Shri Prahlad Joshi inaugurated the Indian Standard Time Dissemination Demonstration Network, Indian Standard Time Dissemination Demonstration Network at the Regional Reference Standards Laboratory in Jakur, Bengaluru. We have details on this from our correspondent. Listen in.
1: Speaking on the occasion, Sri Prahlad Joshi said the initiative marks a historic step towards strengthening the sovereignty of India's digital infrastructure through a secure and precise national time standard. He said the new system would reduce dependence on external time reference and enhance the security of critical sectors including banking, financial markets, telecommunications and the national power grid by protecting them against cyber threats and data manipulation. The minister said the project is being implemented by the Department of Legal Metrology in collaboration with the National Physical Laboratory, ISRO, BSNL and SEBI. He added that while complying with the global UTC, Coordinated Universal Time Standards, the indigenous system would strengthen India's internal security and support technology-driven governance and transparent public service delivery. Pondumon, Akashwani News, Bengaluru.
2: और बेंगलुरु से अब चलते हैं शिमला की ओर. हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहन दे रही है. इसके अलावा धार्मिक एवं साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक नई पहल की गई है. एक रिपोर्ट.
3: हिमाचल प्रदेश को हर मौसम में पर्यटकों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. प्रदेश की हसीन वादियां देशी और विदेशी पर्यटकों से सदैव गुलजार रहती हैं. ऐसे में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ हिमाचल को साहसिक पर्यटन के केंद्र के रूप में भी स्थापित किया जा रहा है. प्रदेश के जलाशयों को लग्जरी और एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसी कड़ी में गोविंद सागर झील में पहली बार क्रूज, शिकारा, हाउसबोट, जेट स्की और वाटर स्कूटर जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. प्रदेश सरकार ने बिलासपुर के हरनौड़ा से तत्तापानी तक 30 किलोमीटर लंबा क्रूज मार्ग विकसित करने का निर्णय भी लिया है. वहीं हमीरपुर जिला के नादौन में ब्यास नदी पर और शिमला जिला की सतलुज नदी पर एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन आकर्षण का केंद्र रहते हैं. उधर कांगड़ा जिला का बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और यहाँ विभिन्न देशों से प्रतिभागी पैराग्लाइडिंग में भाग लेते हैं. हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म की अपार संभावनाओं को देखते हुए नई इको टूरिज्म नीति लागू की गई है. इस नीति का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है. इसके साथ साथ हिमाचल को एस्ट्रो टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार ने लाहौल स्पीति के काजा में स्टार गेजिंग सुविधा आरंभ की है. राज्य सरकार ने भारत चीन सीमा से सटे रणनीतिक और ऐतिहासिक शिपकीला दर्रा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बाद बॉर्डर टूरिज्म की शुरुआत की है. इस पहल का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और नागरिकों को देश के अंतिम छोर तक पहुंचने का अनुभव देना है. राज्य में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के दृष्टिगत कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की प्रक्रिया जारी है और प्रदेश के जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट के लिए कार्य प्रगति पर है. प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए की जा रही नवोन्मेषी पहल निश्चित रूप से प्रदेश में आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ विकास को नए आयाम प्रदान करने में मददगार साबित होंगी. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से प्रभा शर्मा.
0: Well, listeners, Jammu and Kashmir has emerged as a key beneficiary under various schemes of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, and according to annual report of the ministry, 8,54,502 farmers in Jammu and Kashmir received 170.9 crore rupees under the 21st installment of the PM Kisan scheme. And of them, well, 85,410 women farmers were provided financial assistance amounting to 17.08 crore rupees, and this reflects their growing participation in the agriculture sector. We have a report. Let's listen in.
4: As per the annual report of Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, 1,26,967 farmers from Jammu and Kashmir had been enrolled under the Pradhan Mantri Kisan Mandan Yojana as of January 25, 2026, ensuring pension benefits for small and marginal farmers. Under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and the restructured weather-based crop insurance scheme, the Union Territory recorded 11.62 lakh farmers.

0: तो शगुन, आज दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें एक ही जगह पे मुकाबले पर टिकी हुई हैं।
1: जी, फुटबॉल फीवर हैज ग्रिप्ड फैंस अक्रॉस द ग्लोब। वेल डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना एंड यूरोपियन पावर हाउस स्पेन प्रिपेयर फॉर अ थ्रिलिंग शोडाउन इन द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल।
0: जी, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के फाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। भारतीय समय अनुसार ये रोमांचक मैच रात 12:30 से शुरू होगा। वहीं तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है।
1: एंड द शेड्यूल, द टाइटल क्लैश इज शेड्यूल्ड टू किक ऑफ एट द न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम। एंड वेल, लास्ट नाइट लेट्स टेल आवर लिसनर्स दैट इंग्लैंड सिक्योर्ड ब्रॉन्ज मेडल आफ्टर डिफीटिंग फ्रांस 6-4 इन अ थ्रिलिंग थर्ड प्लेस मैच एट मायामी Stadium. The French striker Kylian Mbappe has surpassed Lionel Messi's World Cup scoring record, taking his career tally to 22 goals and took the lead in the Golden Boot race. Now let's tell you about badminton. Well, star Indian shuttler and two-time Olympic medalist PV Sindhu scripted history, becoming the first Indian to win the prestigious Japan Open. Well, she clinched the women's singles title in Tokyo today, defeating local favourite and three-time world champion Akane Yamaguchi in a straight games 21-17, 21-17. And well, with the win, Sindhu ended she has secured this title after more than 2 years. Sindhu's previous title came at the Sayyid Modi International in 2024. The triumph is her biggest title since winning the World Championships in 2019. Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya congratulated PV Sindhu on the historic triumph in a social media post. Dr. Mandaviya said the entire nation is proud of her.
0: श्रोताओं, कभी कोई अपने शब्दों से समाज को नई दिशा देता है तो कोई अपने कर्मों से इतिहास रच देता है। आइए अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका 19 जुलाई से एक खास संबंध है और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अमिट पहचान बनाई।
1: दिस इज व्हाट वी ऑल बीन वेटिंग फॉर।
0: जी, हम ना अपने आप ही आए दुखों के इस नगर में, था मिला तेरा निमंत्रण ही हमें आंधे इस सफर में, किंतु फिर भी लौट जाते हम बिना गाए यहां से, जो सभी को तू बराबर तौलता अपनी नजर में। अब भले कुछ भी कहे तो, खुश की या ना खुश रहे तो, गांव भर को हम सही हालत बताकर ही उठेंगे, विश्व चाहे या ना चाहे। ये भावपूर्ण शब्द हिंदी के यशस्वी कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज ने अपनी कविता गीत में लिखे थे। नीरज जी की रचनाओं की यही खूबसूरती थी कि वे जीवन के सच को बेहद सरल लेकिन गहरे शब्दों में कह जाते थे। उनके लिखे गीत जैसे कारवां गुजर गया, फूलों के रंग से और शोखियों में घोला जाए आज भी लोगों की जुबान पर है। उन्हें

0: पद्मश्री और पद्मभूषण सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया था।
1: Well listeners, tributes to the great freedom fighter Mangal Pandey on his Jayanti. His extraordinary courage and unwavering resolve during the revolt of 1857 ignited the flame of India's first war of independence and inspired countless Indians to fight for the nation's freedom.
0: जी, और मंगल पांडे की यही अदम्य साहस, देश प्रेम और बलिदान आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यही कारण है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उनका नाम सदैव सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। श्रोताओं, मंगल पांडे का साहस केवल उनके कार्यों से ही नहीं था, बल्कि उनके शब्दों में भी झलकता था। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म मंगल पांडे का एक दमदार संवाद।
2: अभी नहीं तो कभी नहीं, क्या हो गया तुम लोगों को? दिखाई नहीं देता, जिस पल का हमें इंतजार था वो पल आ गया है। वक्त आ गया है अपना वचन निभाने का, वक्त आ गया है मारने या मर जाने का। उठाओ अपनी बंदूकें और लड़ो, लड़ो अपनी आजादी के लिए, लड़ो एक बार अपने राज के लिए, जाओ।
1: Well, Aamir Khan playing the character of Mangal Pandey and his legacy, it continues to motivate us to uphold and the ideals of courage, sacrifice and service to the nation.
0: श्रोताओं, स्वतंत्रता की इस मशाल को आगे बढ़ाने में देश के अलग अलग हिस्सों से अनेक महान व्यक्तित्वों ने अपना योगदान दिया। आइए अब ऐसी ही एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व खूबचंद बघेल के बारे में जानते हैं। खूबचंद बघेल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, साहित्यकार और पृथक छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने किसानों, ग्रामीण समाज और क्षेत्रीय संस्कृति के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया। छत्तीसगढ़ के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में उनका योगदान आज भी खास महत्व रखता है।
1: टुडे लिसनर्स, वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग जयंत विष्णु नार्लिकर, द एस्ट्रोफिजिसिस्ट, परफॉर्म्ड रिसर्च ऑन अल्टरनेटिव कॉस्मोलॉजी। He wrote textbooks on cosmology, popular science books as well, and science fiction novels and short stories. Even I am an avid reader of science fiction novels. So Narlikar, Jayant Vishnu Narlikar, studied at Banaras Hindu University and Cambridge University, where he obtained his PhD in 1963, working with Fred Hoyle. So after postdoctoral work in Cambridge in 1972, he was appointed a professor at the Tata Institute of Fundamental Research. In 1988, he became the first director of the Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics. So I was telling you about Jayant Vishnu Narlikar.
0: शगुन, जैसा कि आपने कहा नार्लिकर जी के बारे में, तो वो ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने ब्रह्मांड के कई रहस्यों को समझने का प्रयास किया था। उनके इस योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण और यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया था। अब बात एक ऐसी कवित्री की जिनकी रचनाओं में मातृत्व, संवेदनाएं और जीवन का सौंदर्य सहज रूप से झलकता है। नालपत बालमणि अम्मा मलयालम साहित्य की सबसे प्रतिष्ठित कवित्रियों में गिनी जाती है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और पद्मभूषण सहित अनेक सम्मानों से नवाजा गया था।
1: वेल, इट इज ट्रू एंड अ टाइमलेस लेगेसी वैष्णवी, इट इज क्रिएटेड थ्रू वर्ड्स दैट इंस्पायर जनरेशंस, वी ऑल बिलीव दैट। सो यस, वी आर रिमेंबरिंग नालपत बालमणि अम्मा ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी। वेल रिवेयर्ड एज द मदर ऑफ मलयालम पोएट्री, शी एनरिच्ड Indian literature through her heartfelt poems that celebrated motherhood, compassion, as well as human values. So her remarkable works, let me name two of them, Amma and Muthasi, they continue to inspire readers across generations.
0: अब नमन उस वीर सैनिक को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम बात कर रहे हैं राजीव संधू के बारे में। वे भारतीय सेना के साहसी अधिकारी थे। राजीव संधू को अद्वितीय वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उनका साहस और बलिदान भारतीय सेना के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मुइनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुइनी से भेंट की। जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मुइनी उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर

0: 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा तथा राज्य के तटीय क्षेत्रों में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गोवा ने आज पोंडा में 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। करीब 188 विद्यार्थियों को बीटेक, एमटेक और पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक भी प्रदान किए गए। गोवा के तलेगांव से विधायक और पूर्व राजस्व मंत्री जेनिफर मॉन्सेरेट का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थी। जेनिफर मॉन्सेरेट 3 बार गोवा विधानसभा की सदस्य रहीं। उन्होंने 2012 से तलेगांव निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 33 ओवर में 206 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: நேரம் இப்பொழுது 6:05. ஆகாஷ்வாணி 100.1 FM கோல்டு நிகழ்ச்சி நிரல் கேட்கும்
2: முன் बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
4: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश शर्मा। श्रोताओं, देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को उड़ान योजना के अगले चरण का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि उड़ान योजना में क्या बदलाव किए गए हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये योजना भारत के क्षेत्रीय हवाई संपर्क तथा विकास में किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। श्रोताओं, बेहतर संपर्क किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला माना जाता है। ये लोगों को नए अवसरों से जोड़ता है और व्यापार तथा विकास को गति देता है। आज के समय में तेज, विश्वसनीय और सुलभ परिवहन व्यवस्था विकास की एक महत्वपूर्ण जरूरत बन चुकी है। ऐसे में नागरिक उड्डयन क्षेत्र भी देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। हालांकि लंबे समय तक भारत में हवाई संपर्क मुख्य रूप से कुछ बड़े शहरों तक सीमित रहा। अनेक छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में नियमित हवाई सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नेटवर्क से जोड़ने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी दिशा में उड़ान योजना ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके माध्यम से छोटे शहरों और कम सेवा वाले क्षेत्रों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इससे न केवल लोगों के लिए यात्रा आसान हुई बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क भी मजबूत हुआ है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि पिछले 9 वर्षों में उड़ान योजना के प्रमुख परिणाम क्या रहे और संशोधित उड़ान योजना में क्या बदलाव किए गए।
2: पिछले एक दशक में भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। वर्ष 2014 में देश में 74 परिचालित हवाई अड्डे थे, जबकि 15 जुलाई 2026 तक इनकी संख्या बढ़कर 165 हो गई है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन बाजार बन चुका है। इस बदलाव में उड़ान योजना ने नई हवाई मार्ग शुरू कर और क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब सरकार ने इस योजना के अगले चरण के रूप में संशोधित उड़ान योजना शुरू की है। इसे वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक 28,840 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ लागू किया जाएगा। इस चरण में हवाई अड्डों के विकास, उनके बेहतर संचालन और छोटे शहरों में हवाई सेवाओं को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत देश भर में 100 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। इसके लिए अगले 8 वर्षों में 12,159 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों को राष्ट्रीय परिवहन नेटवर्क से बेहतर ढंग से जोड़ना और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देना है। योजना के अंतर्गत छोटे हवाई अड्डों के संचालन और रखरखाव के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। कई क्षेत्रीय हवाई अड्डों को शुरुआती वर्षों में अधिक खर्च और कम आय जैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रत्येक हवाई अड्डे को 3 वर्ष तक प्रति वर्ष 3,06,00,000 रुपए, जबकि प्रत्येक हेलीपोर्ट और जल

0: एरोड्रोम को प्रति वर्ष 90 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जहां सामान्य हवाई अड्डों का निर्माण आसान नहीं है, वहां बेहतर हवाई संपर्क के लिए 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित किए जाएंगे। इस पर अगले 8 वर्षों में 3661 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन हेलीपैडों से स्वास्थ्य सेवाओं, आपदा राहत और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच को मजबूत करने में मदद मिलेगी। छोटे शहरों के हवाई मार्गों पर सेवाएं लगातार चलती रहे, इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण की व्यवस्था भी जारी रहेगी। इसके लिए 10 वर्षों की अवधि में 10,043 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत एयरलाइन कंपनियों को 5 वर्षों तक वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे तीसरी वर्ष से चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा, जबकि किसी मार्ग पर विशेष परिचालन अधिकार 3 वर्षों तक ही दिए जाएंगे।
1: श्रोताओ, संशोधित उड़ान योजना का उद्देश्य केवल क्षेत्रीय हवाई सेवाओं का विस्तार करना ही नहीं है, बल्कि देश के छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों को विकास की नई संभावनाओं से जोड़ना भी है। सरकार का मानना है कि हवाई अड्डे केवल परिवहन का माध्यम नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण केंद्र भी बनते हैं। 28 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हवाई अड्डे केवल आधारभूत ढांचा नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास के इंजन भी हैं। आइए सुनते हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा था।
2: किसी भी देश में एयरपोर्ट सिर्फ एक सामान्य सुविधा नहीं होता, ये एयरपोर्ट प्रगति को भी उड़ान देते हैं। साल 2014 से पहले देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, आज 160 से अधिक एयरपोर्ट देश में है। अब महानगरों के अलावा देश के छोटे छोटे शहरों में भी हवाई कनेक्टिविटी पहुंच रही है। भाजपा सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि एयरपोर्ट भी बने और किराया भाड़ा भी सामान्य परिवारों की पहुंच में रहे। इसलिए हमने उड़ान योजना शुरू की थी। इस स्कीम के कारण बीते कुछ सालों में 1,60,00,000 से अधिक देशवासियों ने उड़ान योजना से टिकट लेकर सस्ती दरों पर हवाई यात्रा की है।
1: श्रोताओ, पिछले 9 वर्षों में उड़ान योजना ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अब नई उड़ान योजना के साथ इस पहल को और आगे बढ़ाया जा रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं कि बेहतर हवाई संपर्क छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को कैसे आसान बना रहा है, इससे पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य सेवाओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को कैसे नई गति मिल रही है।
0: पिछले 9 वर्षों में उड़ान योजना ने देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 15 जुलाई 2026 तक इस योजना के अंतर्गत 679 क्षेत्रीय मार्गों के माध्यम से 95 हवाई अड्डों और हेलीकॉप्टर लैंडिंग स्थल को जोड़ा जा चुका है। योजना की शुरुआत से अब तक 3,58,000 से अधिक उड़ानों का संचालन हुआ है, जिनके जरिए 1,68,00,000 से अधिक यात्रियों ने हवाई यात्रा की सुविधा प्राप्त की है। इस योजना का प्रभाव देश के कई दूरस्थ पर्वतीय और द्वीपीय क्षेत्रों में भी देखने को मिला है। तेजपुर, पासीघाट, दीव, पिथौरागढ़ और राउरकेला जैसे क्षेत्रों में हवाई संपर्क बेहतर होने से लोगों की आवाजाही आसान हुई है और छोटे शहरों को बड़े शहरी केंद्रों से जुड़ाव मजबूत हुआ है। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्वास्थ्य तथा आपातकालीन सेवाओं तक पहुँच भी बेहतर हुई है। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए भी कई पहल की गई है। उड़ान यात्री कैफे के माध्यम से हवाई अड्डों पर किफायती भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं फ्लाइब्रेरी जैसे पहल के जरिए यात्रियों को निशुल्क पुस्तकों और निशुल्क वाईफाई जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। उड़ान योजना ने यात्रा का समय कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उदाहरण के लिए विजयवाड़ा और कडप्पा के बीच सड़क मार्ग, जिससे जहां पहले 8 से 10 घंटे लगते थे, वहीं अब हवाई यात्रा से ये दूरी लगभग 1 घंटे में तय की जा सकती है। इसी तरह यात्रियों के अनुभव बताते हैं कि कई क्षेत्रीय मार्गों पर यात्रा अब पहले की तुलना में अधिक तेज, सुविधाजनक और किफायती हो गई है। संशोधित उड़ान योजना में आत्मनिर्भर भारत पर भी विशेष जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में संचालन के लिए पवन हंस को 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर तथा अलायंस एयर को 2 HAL डॉर्नियर विमान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य न केवल क्षेत्रीय हवाई सेवाओं को मजबूत करना है, बल्कि स्वदेशी विमान निर्माण क्षमता को भी

0: बढ़ावा देना है। विशेषज्ञों का मानना है कि उड़ान से संशोधित उड़ान तक का ये सफर केवल हवाई सेवाओं के विस्तार की कहानी नहीं है, ये छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों को बेहतर संपर्क, नए अवसरों और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: श्रोताओ, भारत जैसे विशाल देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत बनाना केवल नए हवाई अड्डे बनाने तक सीमित नहीं है। इसके लिए एक मजबूत और टिकाऊ व्यवस्था जरूरी है और इसी सोच के साथ उड़ान योजना के लिए भारत ने एक विशेष वित्त पोषण मॉडल अपनाया है, जिसके तहत इस योजना के लिए धन की व्यवस्था नागरिक उड्डयन क्षेत्र के भीतर से ही की जाती है। इसे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लेवी कहते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से ये व्यवस्था क्षेत्रीय हवाई सेवाओं को और मजबूत बनाने में मदद कर रही है। श्रोताओं, ये स्पष्ट है कि उड़ान से मॉडिफाइड उड़ान तक की ये यात्रा केवल हवाई यात्रा को आसान बनाने की पहल नहीं है, बल्कि छोटे शहरों, दूरदराज के क्षेत्रों और आम नागरिकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का भी एक प्रयास है। इसी के साथ आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अक्षत ममगाई और वाचक स्वर मुनीश शर्मा।
2: और आइए अब सुनते हैं समाचार।
3: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। श्वः आरभ्यमाणस्य संसदः प्रावृट् सत्रात् प्राक् सर्वकारेण सर्वदलीय सभाम् आहूतम्। सभायाम् NCPI दलम् आमन्त्रणे विपक्षेण प्रतीकात्मकरूपेण बहिष्कारं कृतम्। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजुः सर्वान् राजनैतिक दलान् संसदः सुगमतया संचालनं सुनिश्चेतुं प्रार्थितवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया, रोमानिया इत्येतेषां त्रिराष्ट्राणां भ्रमणार्थं प्रस्थितवती। जम्मू कश्मीर प्रदेशे अनेकेषु स्थानेषु आकस्मिक जलप्लावनेन, भूस्खलनेन च नैके जनाः मृताः, सम्पत्तिनां क्षतिः चाभवत्। उद्धारकार्याणि प्रचलन्ति, केन्द्रेण सर्वविध सहायतायै आश्वासितम्। बैडमिंटन क्रीडायां पीवी सिंधु इत्येषा प्रथमा भारतीय महिला अभवत्, यया जापान ओपन बैडमिंटन स्पर्धा विजित्य ऐतिह्यं विरचितम्, अपि च अद्य रात्रौ फीफा विश्वकप अंतिम स्पर्धायाः कृते अर्जेंटीना स्पेन देशौ सज्जौ स्तः। अथ वार्ताः विस्तरेण। श्वः आरभ्यमाणस्य संसदः प्रावृट् सत्रम् आगामि मासस्य 13 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। अस्मिन् सत्रे अनेकानि महत्वपूर्णानि विधेयकानि प्रस्तूयन्ते। प्रावृट् सत्रस्य पूर्वसन्ध्यायां केन्द्रसर्वकारेण अद्य संसदि सर्वदलीयसभा आयोजिता। अस्याः सभायाः अध्यक्षता रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, केन्द्रीय संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः, राज्यसभायाः सदननेता जगत प्रकाश नड्डा च अकुर्वन्। संसदीय कार्य राज्यमन्त्री अर्जुन राममेघवालः तथा डॉ. एल. मुरुगनः अपि सभायाम् उपस्थितौ आस्ताम्। सभायाम् अपना दलस्य नेत्री अनुप्रिया पटेलः, जेडीयू दलस्य नेता संजय झा, टीडीपी दलस्य नेता लावू श्रीकृष्ण देवरायलु, कांग्रेस दलस्य नेता जयराम रमेशः, समाजवादी दलस्य नेता धर्मेन्द्र यादवः, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा दलस्य राज्यसभा सदस्या महुआ माझी तथा 40 अधिकानां राजनैतिक दलानां 50 अधिकाः नेतारः उपस्थिताः आसन्। सभायाः आरम्भे एव विपक्षीय दलानां सदस्याः NCPI इत्येतस्य दलस्य सहभागितामालक्ष्य विरोधं प्रदर्शयितुं प्रतीकात्मकरीत्या उपवेशनात् बहिर्गतवन्तः। NCPI इति पञ्जीकृतं राजनैतिकदलमस्ति, यस्य पश्चिमबङ्ग विधानसभा निर्वाचनेषु सहभागिता अभवत्। सम्प्रति तृणमूल कांग्रेस दलस्य अनेकाः विद्रोहिसांसदाः अपि अस्मिन् दले एव सम्मिलिताः सन्ति, तथापि विरोधं प्रकटयन् विपक्षीयाः पुनः सभायां समुपविष्टाः। सभायाः अनन्तरं वार्ताहरैः सह संवादं कुर्वन् किरेन रिजिजुः सर्वेभ्यः राजनैतिकदलेभ्यः संसदः सुचारुरूपेण सञ्चालनं सुनिश्चेतुं तथा प्रमुखविषयेषु रचनात्मकचर्चायां सहभागिता

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking your calls on mutual fund related queries. But do remember, we do not address stock or company specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I'm Sarabjeet Kaur with my co-anchor, Subodh Mishra.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106। श्रोता, इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
0: Foreign portfolio investors infuse nearly 12,000 crore rupees into Indian equities so far in July. In bullion market, gold and silver prices extend downward slide last week, and domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings results and geopolitical developments for Qs next week.
1: Videshi portfolio niveshakon ne July mein ab tak bhartiya share bazar mein lagbhag 12,000 crore rupaye ka nivesh kiya. Sarafa bazar mein lagatar dusre hafte sone aur chandi ki kimaton mein giravat aur agle hafte desh ke niveshakon ka focus rahega aarthik aankdon, companiyon ki aamdani aur vaishvik gatividhiyon par.
0: And listeners, before we go any further in the program, may we once again remind you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: तो हम सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले खबरों पर नज़र डालते हैं सरबजीत। देखें आज क्या हाल रहा है इस हफ्ते FPI का। लगातार चार महीने की बिकवाली का दबाव बनाए रखने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI ने जुलाई में

0: वाली की है। इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार में उन्होंने 11,897 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सेमीकंडक्टर के वैश्विक व्यापार में कमजोरी से एफपीआईज अब फिर से उभरते हुए बाजारों का रुख कर रहे हैं। देश के बेहतर आर्थिक संकेतकों और तिमाही आमदनी की अच्छी खबरों से विदेशी निवेशकों में उत्साह है, लेकिन अगर पिछले सप्ताह के आंकड़ों पर गौर करें तो एफपीआईज ने भारतीय शेयरों से 3,260 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। सरकार की टैक्स नीति में बदलाव के बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजार में लगातार दिलचस्पी दिखाई है। जुलाई में अब तक उन्होंने एफएआर के जरिए 7,492 करोड़ रुपए और जनरल रूट से 4,480 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
1: और गुरुग्राम से कांता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कांता जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछे। जी,
2: मैं ये पूछना चाहती हूँ मैडम।
0: जी, सवाल पूछे। जी
2: जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो पीपीएफ होता है ना, पीपीएफ में निवेश कितना, बैंक में कितना सुरक्षित है? बैंक जैसे पोस्ट ऑफिस में तो पैसा मरता नहीं कभी, और बैंक का कोई पता नहीं होता, तो मैंने बैंक में पीपीएफ खोला, वो कितना सुरक्षित है?
0: पीपीएफ में पैसा कितना सुरक्षित है?
3: कांता जी, पीपीएफ क्योंकि एक गवर्नमेंट की स्कीम है और ये फिक्स्ड इनकम एक्सपोजर आपको प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, और ये काफ़ी लंबे 15 साल के लिए आप अपना पैसा यहाँ डालते हैं। यहाँ पर भी एक तरीके की कंपाउंडिंग होती है कि आप जो डालते हैं उस पर आपको एक इंटरेस्ट मिलता है, और फिर वो इंटरेस्ट जुड़ के आपके उस टोटल अमाउंट पर आपको एक तरीके का ब्याज है जो मिलता रहता है। तो इसकी सुरक्षा जितनी भी स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं उनसे काफ़ी ऊपर है। तो आप बिल्कुल इसमें अगर निवेश कर रहे हैं तो बिना इस चिंता के आप बिल्कुल अपना निवेश जारी रख सकते हैं।
0: जी स्नेहा, जब पीपीएफ की बात आती है तो कई बार लोग पूछते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से कि पीपीएफ कितना शेयर रखें, और ख़ासकर जब पहले जो ओल्ड टैक्स रिजीम था उसमें इसके फ़ायदे दिखते थे। क्या आप बदले हुए हालात में इसका क्या सीन है, क्या रखना चाहिए?
3: एक बात तो ये है कि अगर आप पहले के समय में रख रहे थे तो क्योंकि एक लंबे टाइम के लॉक इन के साथ आता है, तो
0: वो
3: पैसे
0: तो
3: रहेंगे ही उसमें। बट देखना इस प्रकार से चाहिए कि हमें इक्विटी और डेट में अपनी एलोकेशन कितनी रखनी है। अगर आप डेट में लंबे समय के लिए कोई एलोकेशन रखना चाह रहे हैं तो पीपीएफ एक्चुअली एक काफ़ी अच्छा विकल्प हो जाता है, क्योंकि उसमें आप ये जो एक सेफ्टी की बात अभी हम कांता जी से डिस्कस कर रहे थे वो भी एक लेवल अप रहती है, और क्योंकि जितना इंटरेस्ट इसमें आज आपको मिल रहा है ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, वो भी टैक्स फ्री मिल रहा है, जो कि मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में लोग चाह रहे होते हैं कि मिल जाए। और फिर इंडिया हैज़ लॉन्ग बीन अ फिक्स डिपॉजिट वाली एक मार्केट रही है, तो गारंटी से हमें काफ़ी प्यार है, तो ये वो हमें ऑफर करती है। तो हम अगर डेट एलोकेशन लंबे समय के लिए रखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इसमें रख सकते हैं।
0: जी, अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से अमित, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: हेलो मार्केट, दिस इज अमित। सो माय क्वेश्चन रिलेटेड, लाइक आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी एज एन अर्निंग एज अ सैलरी इनकम, एंड माय मदर इज आल्सो गेटिंग पेंशन, so I have transferred my mutual funds to my mother, and when I'm filing my income tax return in a new regime both for myself and my mother, so it is showing of rupees around 10 lakhs and under the off market transaction credit in EIS and TIS statements. So I want to know whether I have to pay any tax or how the tax calculation will be done while filing this return, for me and for my mother, I transferred the mutual funds.
0: मुझे लगता है स्नेहा कि ये म्यूचुअल फंड से ज्यादा इनकम टैक्स का सवाल है, और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप इस पर बेहतर सलाह ले पाएंगे।
1: लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम हैदराबाद। सौरभ जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
5: गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा।
1: गुड इवनिंग।
5: माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड रीबैलेंसिंग। आई जस्ट वांट टू आस्क दैट लेट्स से

0: on 1st of August, I have to rebalance for the yearly rebalancing. So in one of my, let's say, asset, that is the mid cap or small cap, I have now more than my stipulated percentage. So for the next year, should I immediately sell off that thing, or I should reduce my SIP for the next year in that mid cap or small cap? Thank you.
1: Right. So Saurav, it's great actually that you're looking at, you're giving a holistic view to your portfolio annually. So kudos on that. On the aspect regarding your mid and small cap have turned heavier as per your targeted allocation, what you can also do is at this point, let's say if you're looking at rebalancing and you have some debt allocation in your portfolio, maybe you can increase that a bit and eventually it should settle out. Because if your funds are doing reasonably well, they have been, let's say, generating healthy returns for you, then there is no point of selling it just for the rebalancing aspect. The other way of looking at it would be increasing, let's say, your debt allocation to some extent. And yeah, that should be helpful.
2: जी अगले कॉलर के पास चलें सरबजीत
3: जी चेन्नई काशीनाथ जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन
4: गुड इवनिंग मैडम
3: गुड इवनिंग
4: मेरा प्रश्न ये है कि मेरा पास एक स्मॉल कैप है टाटा स्मॉल कैप और दो फ्लेक्सी कैप क्वांट फ्लेक्सी कैप और जेम फ्लेक्सी कैप इस तीनों फंड के बारे में क्या अच्छा है इस पे बने रहना चाहिए हर फंड में दो दो हजार जा रहा है ये क्या अच्छा है इसकी थोड़ा जानकारी चाहिए धन्यवाद
1: तो जो आपने पोर्टफोलियो बताया कि आप दो स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हैं और एक फ्लेक्सी कैप में इस लिहाज से मुझे लगता है कि आपका स्मॉल कैप एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा रह सकता है सिंस आप इक्वल अमाउंट इन तीनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि स्मॉल कैप हमारे पोर्टफोलियो का एक थोड़ा छोटा हिस्सा रहे बहुत ज़्यादा ओवर पार ना कर ले क्योंकि होता क्या है लंबे समय में ये देखा गया है कि बीच बीच में स्मॉल कैप जब मार्केट गिरती है तो स्मॉल कैप में जो फॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप ऐसे करें कि अगर आप स्मॉल कैप में जो एलोकेशन कर रहे हैं इसके साथ साथ आप एक और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर लें ताकि जो आपका एक पोर्टफोलियो का होलिस्टिक व्यू है वो थोड़ा बैलेंस हो पाए बस इतना इंश्योर करना कि जब वो उतार चढ़ाव हो रहा है स्मॉल कैप में तब आप डरे नहीं आप अपनी SIPs को कंटिन्यूड रखें क्योंकि वही लंबे समय में आपको एक ही स्ट्रैटेजी होती है जो आपको आपका रिटर्न आपका कमाई का मैक्सिमम बेनिफिट आपको दे सकती है तो आप देखिए अगर आप एक और फ्लेक्सी कैप में आपके पास सरप्लस है तो SIP स्टार्ट कर लीजिए
2: जी दिल्ली से आकाश जुड़ गए हैं आकाश स्वागत है आपका सवाल पूछें लगता है आकाश से हमारा संपर्क टूट गया है अगले कॉलर भी हमारे साथ हैं सरबजीत
3: यस आवर नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम फरीदाबाद सुभाष जी सवाल पूछें
5: हां नमस्कार सर
3: जी नमस्कार
5: मैडम अभी आप बता रहे थे कि फॉरेन इन्वेस्टर अभी इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में तो मैं ये जानना चाहता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ उनको इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किया है क्या जैसे डेप्ट फंड में उनका टैक्स रिबेट का दिया था ऐसा ही कोई इक्विटी फंड में भी दिया है और दूसरा ये है कि वो कौन सी स्कीम में इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर ये कुछ पता चल सकता है
2: वो जिस खबर की बात कर रहे हैं मैं वो साफ कर दूं कि वो इक्विटी फंड नहीं है उन्होंने भारत के शेयर बाज़ार में निवेश किया है और डेट फंड में भी नहीं है वो डेट मार्केट में है वो भारत के पूंजी बाज़ार का ही हिस्सा है तो मुझे लगता है ये जवाब काफ़ी होगा हमारे श्रोता के लिए जी अगले कॉलर के पास चले हम
3: यस लेट्स कनेक्ट विद आकाश फ्रॉम दिल्ली
5: हेलो
2: जी आकाश
5: मुझे दो बातें पूछनी है एक तो ये पूछना है कि जैसे म्यूचुअल फंड के बारे में हम ब्रांच में जाते हैं तो वो अपने एजेंट के द्वारा हमें कुछ चीजें बताते हैं तो वहाँ कंफ्यूजन रहता है वो अपनी ही कंपनियों के बारे में ज्यादा हमें राय देंगे और क्योंकि हम लोग की FD है तो हम लोग एक राय ये लेना चाहूंगा FD के बारे में कि हम एक साल के बाद मैच्योरिटी के बाद ही लें तो ज्यादा बेनिफिट है या हम हर महीने या तीन महीने बाद अपना से बनाएं क्योंकि वो कहते हैं कि आप मैच्योरिटी के बाद लेंगे तो आपको एक साल के बाद कंपाउंड ब्याज मिलेगा कंपाउंड ब्याज तो वो समझे ना चक्रवर्ती ब्याज ब्याज के

0: गया और साथ में ये सारे एक्सपर्ट आते हैं, आप लोग कहीं आपका ऑफिस भी होता है जहां आप लोग आम आदमी फीचर रूम में जाना चाहता है, आपसे राय लेना चाहता है, क्योंकि आप आकाशवाणी में आते हैं तो आपका विश्वास ज्यादा बना रहता है। धन्यवाद
1: जी। आकाश जी, आपकी वॉइस में थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, जितना मैं समझ पाई हूँ आप कहना चाह रहे हैं जब आप बैंक में म्यूचुअल फंड बाय करने जाते हैं तो वो आपको अपनी ही कंपनी के फंड सजेस्ट।
2: जी ऐसा अक्सर होता है।
1: हाँ बिल्कुल ऐसा।

0: इक्विटी फंड्स देखना चाहेंगे तो आप उनमें चुनाव कर सकते हैं कि कौन सा जो जिसका खर्चा कम है, जिसने मार्केट के उतार चढ़ाव लंबे समय में देखे हुए हैं और उनसे आपको एक हेल्दी रिटर्न जनरेशन रही है, पर लंबे समय में, छोटे समय में नहीं. एक साल में कोई अच्छा बुरा कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मार्केट ही लॉन्ग टर्म एक तरीके के लॉन्ग टर्म जनरेशन वेल्थ जनरेशन के लिए है. अगर आपका गोल 3 साल से कम के लिए है तो हम डेट फंड्स देखेंगे. अगर आप पहली दफ़ा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम हाइब्रिड फंड्स देखेंगे. इतना भी अगर हम समझ के जाते हैं तो जब कोई हमें गलत चीज़ बेच रहा होता है या जो हम नहीं चाहते हैं वो बेच रहा होता है, वी कैन ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चंस. जब हम सवाल करते हैं तो फिर हमें जवाब सामने वाला जिस तरीके से दे रहा होता है उसमें हम एक इन्वॉल्वमेंट रह पाती है, और क्योंकि सामने वाला ये समझता है कि वो काफ़ी नॉलेजेबल है, वो आपको एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है. बट अगर आप खुद से कुछ फंड्स का चुनाव करके जाते हैं और आप उन्हें बोलें कि आपको इन्हीं में करना है, तो मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप अपना स्टैंड रखिए और आप फिर इन्वेस्ट करिए. और अगर बैंक के थ्रू आप नहीं कर पाते हैं तो, और आप अगर मान लीजिए डिजिटली आप काफ़ी सोफेस्टिकेटेड हैं, तो आप AMCs की वेबसाइट पे जाकर, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके फंड का चुनाव कर सकते हैं जो आपको, जिसमें इन्वेस्ट करना है. बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपको बेच रहे हैं आप उसी में निवेश कीजिए. दूसरा, जो आपने बोला कि FD एक साल की लेनी चाहिए या ज़्यादा की लेनी चाहिए, मेरी समझ में अगर आप इफ़ एट ऑल फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि जो आपका जितने समय का गोल है आप उतने समय के लिए वो वाले टेन्योर की FD लें. क्योंकि होता क्या है कि अगर वो मान लीजिए आपका मैच्योर होता है, वो वापस आता है आप, और उसी समय ज़िंदगी में कुछ ऐसा सर्कमस्टांस आ जाता है जहाँ पे आपको लगता है अच्छा यही इस्तेमाल करके अपना वो कंज्यूम कर लेते हैं पैसे, तो मतलब जब मैं सोचती हूँ इन्वेस्टमेंट का तो मुझे लगता है कि गोल के साथ अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट जोड़ते हैं तो एक बेटर वैल्यू मिल पाती है आगे जाकर, और जो इंटरमिटेंटली हम कंज्यूम कर लेते हैं उसका डर खत्म हो जाता है.
1: जी, अगले कॉलर है दिल्ली से दिनेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
2: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से.
1: जी,
2: मैं दो बातें पूछना चाहता हूँ. एक तो ये है कि म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशो होता है, जो मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, फंड कैसा भी परफॉर्म करे फंड मैनेजर को अपने चार्जेस मिल जाते हैं. ऐसा क्या नहीं होना चाहिए कि अगर इंडस्ट्री एवरेज से बेटर परफॉर्म कर रहा है तो मैनेजर को बेटर चार्जेस मिले, और अगर इंडस्ट्री से एवरेज से कम परफॉर्म किया है तो वो कम चार्जेस लेकर बाकी चार्जेस NAV में ऐड कर सके. दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूछना चाहता हूँ कि गोल्ड ETF और सिल्वर ETF में से किसमें इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा. थैंक यू.
0: जी दिनेश जी, आपका जो पहला सवाल है ये जब भी मार्केट अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही होती है तब बिल्कुल जो लंबे समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उनके दिमाग में ये आता है. और हाल फिलहाल में सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस लिंक्ड एक्सपेंस की बात करी थी, जिसका बिल्कुल यही माध्यम था कि जब कोई फंड अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो मतलब इन्वेस्टर को उसमें रहने का एक फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर मैनेजमेंट को भी उसका जो प्रोपोर्शन है जो एक एक्सपेंस के तौर पर मिलता है वो उसी रिलेटिवली टू द परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, तो कम ज़्यादा परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको मिले. बट इस पर अभी ये बस एक सर्कुलर है, इस पर कुछ और डेवलपमेंट नहीं हुई है. AMCs ने अभी इसको इनेबल नहीं करा है, या फिर इस पर क्या थिंकिंग चल रही है ये सब, मतलब अभी टाइम जैसे जैसे आगे जाएगा तभी हमें पता चलेगा. बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि दिनेश जी, सुना है ये सेबी ने, रेगुलेटर ने, देखते हैं इसके आगे होता क्या है. एक बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि माना वो एक्सपेंस ले लेते हैं, बट इसकी वजह से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो हम जारी रख रहे हैं उसको पॉज या स्टॉप नहीं करना चाहिए. हमारा नज़रिया ये रहना चाहिए कि अगर कुछ 3 साल तक या फिर मतलब वो परफॉर्मेंस आपको उतना नहीं बेनिफिट दे रही है तो आप बिल्कुल उसमें अपनी SIPs पॉज करके एक दूसरे फंड को देखिए. बट छोटे समय में इस तरीके की थॉट से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पे पॉज ना लगाइए. और दूसरा, जो आपका क्वेश्चन था कि गोल्ड ETFs और सिल्वर ETFs में से किसका चुनाव करना चाहिए, तो बेसिकली ये एक तरीके का ऐसा एक्सपोजर है कि आपको मेटल में एक्सपोजर लेना है, समथिंग बियॉन्ड इक्विटी, जो इक्विटी के उतार चढ़ाव के साथ आपको एक तरीके का बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं. तो गोल्ड का जितना हिस्ट्री देखी गई है वो इतना ये प्रोवाइड कर पाता है.

0: प्लस गोल्ड ETFs ज़्यादा पुराने हैं और ज़्यादा वेराइटी अवेलेबल है मार्केट में उनकी, तो आप चुनाव किसी का भी कर सकते हैं, बट गोल्ड की हिस्ट्री क्योंकि ज़्यादा है तो उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जिसको आप जब आप खरीद बेच करते हैं मार्केट में, तो शायद एक बेटर निवेश वो रह सकता है. बट इंश्योर बस ये करना है कि मेटल में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक्सपोजर 10% से ज़्यादा ना रहे आपके पोर्टफोलियो का.
1: All right, our next caller is also from Delhi. Yogesh ji, सवाल पूछे.
2: जी नमस्कार आप सभी को. मेरा सवाल ये है कि ICICI क्या, मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि उसके लिक्विड फंड में हमने जो पैसे डाले थे तो उसमें विड्रॉ करने पे 7 days के अंदर अगर हम विड्रॉ करते हैं तो पेनल्टी का चार्जेस था, जबकि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में और शॉर्ट टर्म फंड में आप डालने के अगले दिन भी निकाल सकते हो, उसमें कोई पेनल्टी नहीं है सर, जबकि उसका जो मैकाले ड्यूरेशन है वो ज्यादा का है. तो ऐसा क्यों होता है कि लिक्विड फंड में ज्यादा लिक्विडिटी होनी चाहिए बट उसमें 7 days का लॉक इन है? और दूसरा सवाल है कि भारत 22 फंड ऑफ फंड
0: जी. योगेश जी, कुछ समय पहले सेबी ने ये नोट करा था कि लिक्विड फंड्स में मतलब एक एग्जिट लोड की काफ़ी ज़रूरत थी क्योंकि लोग बीच में डाल के जल्दी निकाल रहे थे, और लिक्विड फंड एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे जो बड़ी कंपनीज के ट्रेजरीज होते हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि हर एक क्वार्टर के एंड में बहुत ज़्यादा पैसा लिक्विड फंड से या तो निकलता है और एक क्वार्टर के बाद वापस आ जाता है. तो ये होता इस वजह से है कि बड़े ट्रेजरी कॉरपोरेट्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एडवांस टैक्स पेमेंट्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो जब वो एक दिन पहले डालते ही निकाल लेते हैं तो एक इम्पैक्ट ऐसा हो जाता है कि उन्होंने तो पैसे निकाल लिए पर उन पे कोई चार्ज नहीं लगा कम समय की इन्वेस्टमेंट के लिए. तो चीज़ों को थोड़ा बैलेंस रखने के लिए सेबी ने ये इंट्रोड्यूस करा था कि 7 दिन के लिए एक बहुत ही मामूली सा एग्जिट लोड लगेगा, बट जब ये बड़े अमाउंट पे लगता है तो वहां पे वो खर्चा ज़्यादा लगता है. और बाकी आपने सही नोटिस करा है कि बाकी के डेट फंड्स में ऐसा कोई एग्जिट लोड का स्पेसिफिकली कोई ड्यूरेशन या फिर ऐसा नहीं है कि आपके पास वहाँ अप्लाई होता है, जनरली डेट फंड्स में नहीं होता है, लिक्विड में ये इंट्रोड्यूस करा गया था स्पेसिफिकली. तो बट इन एनी केस हम जब लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतना इंश्योर कर सकते हैं कि इतने कम समय के लिए ना करें तो हमारा फ़ायदा रहेगा.
3: जी, और देखते हैं सोने चांदी का क्या हाल रहा है. सर्राफा बाजार में लगातार दूसरे हफ्ते भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई. मजबूत अमरीकी डॉलर, ट्रेजरी यील्ड्स में बढ़ोतरी और इस आशंका से निवेशकों का भरोसा डगमगा गया कि अगर पश्चिम एशिया में टकराव बढ़ता है तो अमरीकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाएगा. MCX में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 1.8% की गिरावट आई और ये 1,40,906 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 3% गिरकर 2,16,013 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. कॉमेक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 2.3% की गिरावट आई और ये $4,018.80 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ. इसी दौरान सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 6.4% गिरकर $56.33 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुई.
0: मैं योगेश जी को एक ये चीज़ भी बताना चाहूँगी. ये जब एग्जिट लोड लगाया गया था उसका एक ये भी रीज़न था टू एनकरेज जो ये कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स, मैं आपको बता रही हूँ कि ये ओवरनाइट फंड में लगाएं लिक्विड के बियॉन्ड, बिकॉज ओवरनाइट इन एनी केस एक दिन के पेपर में इन्वेस्ट करते हैं जिसके लिए वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं जो कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स हैं, तो ये भी एक रीज़न था वहाँ पे.
1: ऑल राइट, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम जयपुर. जितेंद्र जी, सवाल पूछे.
4: हाँ मैडम, देखिए मेरा दो सवाल है. जैसे अभी तो वैसे मार्केट डाउन है तो कोई नया फंड हाउस कोई नया फंड लेके आया है तो अब तो उसका एंट्री जो है बहुत नीचे लेवल पे रहेगा, तो इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? नया फंड हाउस है और नया स्कीम है तो डाउन है मार्केट, पहला प्रश्न तो ये. दूसरा प्रश्न है कि मैडम अब पिछले एक साल से एक सिस्टम निकल गया कि हम अपना यूनिट जो है गिफ्ट कर सकते हैं, तो मैंने अप्लाई किया और मैं ऐसा कर भी पाया, बहुत ईजी था. तो ऐसा क्या डीमैट में भी है क्या?
0: जी जितेंद्र जी, जो आपका पहला सवाल है कि नया फंड आ रहा है, मार्केट डाउन है, नीचे से स्टार्ट होगा, इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगी जब भी कोई नया फंड आता है तो सबसे पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या ये कुछ ऐसा एक्सपोजर दे रहा है जिसमें मेरे और पोर्टफोलियो में इसका एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, एज इन इसमें कुछ ऐसी यूनिक बात है टू ऑफर टू यू कि ये आप चाहें

0: अपने पोर्टफोलियो में, तो फिर उससे क्या होगा कि आप कि कोई और वजह देखेंगे ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए. दूसरा, कुछ अगर ऐसा थीम आ रहा है जिसमें आपका जो एक बिलीफ होता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा है, आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसा एक्सपोजर हो, आपको लगता है कि ये स्टॉक, ये जो जो थीम है वो आपको आगे जाके बेनिफिट देगा, तो बिल्कुल आप फिर उसमें इन्वेस्ट करिए. ये दो रीजंस अगर आपके इसमें टिक होता है, कोई ये जो नया फंड आ रहा है उसका बॉक्स, तो बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्ट करिए, बेझिझक करिए. क्योंकि आप लंबे समय के लिए करेंगे तो जो आपका एंट्री पॉइंट है वो उस तरीके से मैटर नहीं करता. SIPs के थ्रू आप एम करेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा लंबे समय में.
1: जी, अगले कॉलर हैं भोपाल से शंकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
2: नमस्ते मैडम. नमस्ते मार्केट मद्रा टीम. मैडम मेरा सवाल है, ये करंट सिनेरियो में जब रिटर्न सारे टेपर होते जा रहे हैं इन एन एक्टिव फंड एंड स्मॉल और मिड कैप और फ्लेक्सी कैप, तो क्या वुड यू एडवाइस फॉर करंट SIP जो हम लोग शुरू कर रहे हैं या जो चल रही है टू स्विच टू एन इंडेक्स फंड, और एक्टिव फंड वुड स्टिल बी ए बेटर बेट फॉर अ लॉन्ग टर्म 5 साल प्लस टेन्योर SIP से 10,000 की या 15,000 की जो भी SIP चल रही है, आपकी एज एन एक्सपर्ट व्हाट वुड बी एडवाइस, एन एक्टिव फंड मैनेज फंड और एन इंडेक्स फंड फॉर लॉन्ग?
0: सो शंकर, द डिबेट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फंड्स डज नॉट रियली स्टैंड अप ऑन द करंट मार्केट सिनेरियो. इट एक्चुअली इवॉल्व्स ऑन द फैक्ट दैट लेट्स से इफ यू आर समबडी हु इज नॉट ओके विद एक्टिव मैनेजमेंट, और लेट्स से यू डू नॉट बिलीव दैट अ फंड मैनेजर विल बी एबल टू डू जस्टिस टू यू एंड दस द फीस ऑल्सो यू वुड नॉट लाइक टू पे, देन द पैसिव fund management automatically becomes your de facto choice. Other than that, let's say for somebody who does not really have any experience in the market, he or she can simply start with a passive fund. So if you are already invested in either passive or active, I would say this is not really any reason to stop those and move on to a different fund or a different management strategy. The issue being that, of course, in large and mid cap, passives have, especially in large caps, passives have taken over, but there are a few funds who are able to beat the index as well, and if you are investing in those then you might as well continue. Same goes for mid cap, and in small cap passive really has a long way to, you know, beat active management, so there also active works best.
3: Let's ask our next caller from Ghaziabad. Ashu ji, sawal puche.
4: Yeah, very good evening. Actually, I wanted to know the prospects of Invesco Contra Fund and if it is good to invest for Invesco Contra Mutual Funds in the current market situations. The second one is Mirae large cap and mid cap, what are the prospects? And I have some points in that particular fund, so should I redeem it or should I continue investing?
0: Right. So how I would say, the prospects can never be judged at this point in time. It is always in hindsight that you would get to know about it. How you can look at it is, if you're looking to build the core of your portfolio, of course, Contra fits there. And for the supplementary allocation, a mid-cap or a small-cap allocation fits well. All of these funds have been decent enough to continue your SIP in. In case you need, you know, any other kind of exposure, let's say a small cap, a multi cap, it can be included in the portfolio.
3: All right, listeners, let's now take a look at how the markets are expected to show up next week. The domestic markets are expected to take cues from the first quarter corporate earnings results, geopolitical developments, commodity prices, foreign investor activity, progress in monsoon, and currency trends in the upcoming week. Market participants will closely monitor key economic indicators, including core industry data, purchasing managers index readings, and foreign exchange reserve figures. Meanwhile, the primary market is set to remain active this week with 3 main board IPOs scheduled for listing.
1: आज वक्त इतना ही है स्नेहा, कार्यक्रम में आने और ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जी, धन्यवाद.
3: Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Foreign portfolio investors infused nearly 12,000 crore rupees into Indian equities so far in July. In bullion market, gold and silver prices extend downward slide last week, and domestic investors to focus on macroeconomic data.

0: corporate earnings results and geopolitical developments for Qs next week. That's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावो श्रीकृष्ण देवरायल्लू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मिवनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मिवनी से भेंट की। जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनी उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वरम पारद्वीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा और राज्य के तटीय क्षेत्रों में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वायत्त संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा है कि यह हमला जॉर्डन में अमरीकी नौसैनिक

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी और पारित किया जाना है। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रेवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मुइनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुइनी से भेंट की। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में आज सुबह से हो रही मूसलाधार वर्षा से भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लगभग 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता है। सबसे अधिक जानमाल का नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपनी दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा तथा राज्य के तटीय क्षेत्रों में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। अमरीकी सेना ने आज भी ईरान पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा है कि ये हमला जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज रात गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 से शुरू होगा। इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
2: திரைக்கானத்தில் அடுத்து கேட்கலாம். வீர சிவாஜி திரைப்படத்திற்காக பாடலை பாடியிருப்பவர் வைக்கம் விஜயலட்சுமி.

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों

0: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालु, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
0: NCPI के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि NDA में NCPI अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
3: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन हो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, दे हैड टू बी गिवन चांस एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फील to run the house is their responsibility. But in our house, it has become regular practice to disturb the house and not allow the house to run.
0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है।

0: पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
1: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
2: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
1: Which would help us strengthen the parliamentary relationship.
0: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए अवसर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और मजबूत होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना

0: जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता हैं। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
1: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार है। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयरज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई है। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Government holds all-party meeting on the eve of monsoon session of parliament beginning tomorrow, urges all political parties to ensure smooth function.

ये आकाशवाणी है। लोकसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस क्रम में आज प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा, संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी

0: पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पनवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: नमस्कार। मौसम की फुहारों के बीच दिल्ली के लुटियन जोन में राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ये सिर्फ एक सत्र नहीं, ये लोकतंत्र की धड़कनों का मौसम है, जहां हर आवाज मायने रखती है, हर सवाल सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देता है और हर जवाब देश की दिशा तय करता है। संसद का मॉनसून सत्र, जहां एक ओर सरकार अपने एजेंडे के साथ तैयार है कानून सुधार और नए फैसलों की रफ्तार लेकर, तो वहीं विपक्ष सवालों की धार, मुद्दों की आग और जनता की आवाज बनकर खड़ा है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में हम खोलेंगे इस सत्र की हर परत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं सांसद सुखदेव भगत, CPIM के तेवरों के साथ हमसे जुड़े हैं सांसद अमरा राम और आम आदमी पार्टी की धारदार आवाज बनकर शामिल हो रहे हैं प्रवक्ता अनमोल पवार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर जी, आपसे शुरुआत करते हैं, चूंकि आप सत्ता पक्ष की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं, समझना चाहेंगे कि संसद का जो मॉनसून सत्र है, सरकार इसमें किस रणनीति के साथ जा रही है और कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं आपकी तरफ से इस सत्र के लिए?
2: देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और एनडीए गवर्नमेंट का सवाल है, हमारा कोशिश ये रहती है कि जो लोगों से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हों जिसको एक लेजिस्लेटिव कानून बनाना चाहिए और उससे देश का फायदा और जनता का फायदा हो, ऐसे मुद्दे लेकर हम पार्लियामेंट में अक्सर आते हैं। इसलिए हर बार कोई ना कोई चीज होती है जिससे सीधा नाता जो है जनता का होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी और खासकर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो बहुत डिसरप्टिव अप्रोच रखती हैं बार बार और चाहती हैं कि किसी तरह भी कोई बिल पास ना हो पाए। लेकिन हमारा जाहिर है अपील होगा अपोजिशन पार्टी से कि देखिए, सरकार चाहती है कि जो लोगों का एस्पिरेशन है, जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल, महिलाओं का एस्पिरेशन, उसका समर्थन प्राप्त हो सभी लोगों से। उसी तरह से अगर डिलिमिटेशन की बात हो तो उसमें भी समर्थन प्राप्त हो, जिस तरह से पिछली बार कई लोगों ने उस वक्त नहीं किया था, लेकिन अब उन लोगों ने अफसोस जाहिर किया। अब समझ में उनको आया कि एक देश नीति होती है, देश के हित में काम होता है, समाज के हित में काम होता है और एक परिवार के हित में काम होता है। तो ऐसे लोगों ने, बहुत लोगों ने पार्टियां छोड़ भी दी है, अपनी पार्टियां बना ली है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ऐसे कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे कोई बिल जो है उसमें कहीं ना कहीं हम पूरे तौर से सेटिस्फाइड है कि लोगों का समर्थन, अपोजिशन बेंच का समर्थन, सबका समर्थन मिलेगा और इस बार हम इस तरह के लेजिस्लेशन को, एक कानून के पास करके, बिल को पास करके कानून बना सकेंगे। उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन एक मुद्दा है, जैसा आपने सही कहा कि कोई घोर अपराध करता हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पर बैठा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर, अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहता तो उसको पद से छोड़ना पड़ेगा। ये भी बिल एक है जो रेफर किया गया था जेपीसी को, वन नेशन वन इलेक्शन का जेपीसी को रेफर किया गया था। ये सब मुद्दे जो है वो जाहिर है जो आएंगे इस बार डिस्कशन के तौर पे आएंगे। लेकिन उसके अलावा भी जो बिल आ सकता है वो हो सकता है कि किसानों से जुड़ा हुआ हो, या फिर लेबर से जुड़ा हुआ हो, या फिर डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे बिल आ सकते हैं जिससे जनविश्वास का बिल हो सकता है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है और माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है जो पेश होगा सरकार की तरफ से। और उसमें मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए अपोजिशन को, उसको डिटेल चर्चा करे और चर्चा करने के बाद बिल का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि बात तो कर लेते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, टाइम भी एलोकेट करवा लेते हैं, लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो फिर ये अपना दूसरा रूप जो है, दूसरा चेहरा दिखाते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस कॉन्डक्ट करना देश की जनता के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत जरूरी है। और मैं अपील करूंगा अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन की पार्टियों को, देश को प्राथमिकता दीजिए, देश हित में जो बिल आ रहा उसको प्राथमिकता दीजिए, देश नीति को प्राथमिकता दीजिए, एक आम नागरिक के हितों में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, ना कि अपने लीडर्स को जो एक ऑलरेडी क्राइसिस में है, जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके यहाँ तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है। ऐसे बिल को ठुकरा के आप जनता का भी फायदा नहीं करेंगे और जब जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता आपको नाकार देगी। ऐसा देखिए केजरीवाल साहब की पार्टी को क्या हुआ, उन्होंने जनता के साथ वायदे किए लेकिन जब झूठ बोला तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया, बाद में इनके अपने लोगों ने ही उनको दरबदर कर दिया। उसी तरह से TMC का देखिए क्या हाल हुआ, आज TMC ही नहीं बच पाई, ममता बनर्जी नहीं बच पाई, इसलिए ममता बनर्जी की जो ऑटोक्रेटिक पॉलिसी थी, जो देश के खिलाफ उनका अप्रोच था, वो सारी चीजें ने उनके अपने पार्टी के लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं इस बात को जग जाहिर करते हुए कि उनकी पॉलिसी और नीतियों से हम लोग रजामंदी नहीं

0: है और इसलिए हम लोग कन्विंस नहीं है, इसलिए देश हित में वो फैसला नहीं लेती, इसलिए उनसे भी अलग हो गए। आज मुझे ऐसा लगता है कि इवन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे, और जब बिल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जहाँ 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि
1: जी
0: इस बार पूरे तौर से उसको अप्रूवल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और लोग अपने देश हित का, देश नीति का ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि परिवार को समर्पित होकर परिवार के लिए काम करेंगे।
1: जी जफर साहब, अब चलते हैं सुखदेव भगत जी के पास जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप आप पर है सुखदेव जी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती, परिवार की राजनीति करती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मानसून सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं, और जैसा कि जफर साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम अब पक्ष में है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, क्या रणनीति है कांग्रेस की?
2: मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी कांग्रेस के नहीं पूरे देश की आवाज ये, अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेके संसद में अपनी बातों को रखती है या बाहर इन बातों को रखती है तो जन मुद्दे होते हैं। और जफर भाई जिन बातों को इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को कहा है परिवारवाद, तो मुझे लगता है कि पैथॉल के कंपनी E20 के लगातार भी बातें काफी चर्चा में रही है, वो किनके बेटे हैं, अमित शाह के बेटे कौन है, तो ये तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के हमेशा जो मुद्दों से भटकाव वाली बात है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जो अगर भारत की बात करें, सौगंध राम की खाते हैं जो वाले बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनकी बदौलत वो सत्ता में आई है, और हमारी जो हमारी विश्वास हमारी आस्था का सा जो खिलवाड़ किया गया है राम मंदिर में, जो चोरी के मुद्दा है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यहाँ के भावनाओं से जुड़ी हुई है। नीट के पेपर जो लगातार हमारे करोड़ों स्टूडेंट्स है जिनका भविष्य अंधकार में, नीट हमारे लिए इश्यू है, बेरोजगारी हमारे लिए इश्यू है, और ये लगातार जिन बातों को करे, अंडमान निकोबार के माध्यम से जिस प्रकार कारपोरेट घरानों को स्थापित की जा रही है, और क्या ये देश संप्रभु है क्या? जिस प्रकार हमारे ये पहली बार ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार हमने देखने को यहाँ मिला है जिसमें कोई दायित्व, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीट के लिए प्रधान जी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर प्राइस हाइक के लिए पूरी जी अकाउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये स्थिति हो। आपने देखा होगा विकास की जो बात करें, कितना भ्रष्टाचार क्या लगातार एक एक बारिश में, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, हाईवेज की बात करें, वो मुद्दे हैं, और ये पहली बार ऐसा सदन में देखने को मिला है कि हम यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, सदन को उन्होंने गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया है कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए, अभी जाके आप देख लो। तो ये पूरी की पूरी सरकार, और जिसकी बात ये कह रहे हैं ना ममता बनर्जी की बात करें, ये पहले तो ये वोट चोरी करती है, एमपी एमएलए को चोरी करते, फिर सरकार भी चुरा लेती है, और एसआईआर का जो मुद्दा है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है वो ना निष्पक्ष है, ना स्वतंत्र है, ना इंडिपेंडेंट है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इन्होंने नहीं बनाकर रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर ग्रुप में काम कर रही है, जिसके लिए राहुल गांधी जी लगातार उन बातों को रख रहा है। आज भी जिस एग्रीकल्चर की बात करें, एमएसपी के बारे में इन्होंने क्या किया है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, और हम ये समझते हैं। और रही बात गंभीरता की, मैं समझता हूं कि मैंने कहा ये सदन केवल राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे आशाओं का वहां पे जो बातें आशाओं भरी निगाहों से देखते लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर में वो मुद्दे गौण हो जाते हैं, तो हम लोग इन मुद्दों को लेके इस बार हम लोग पूरी प्रखरता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ राहुल जी के नेतृत्व में इन बातों को हम लोग सदन में रखेंगे।
1: CPIM से हमारे साथ अमरा राम जी भी हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी पार्टी किन जन सरोकारों को संसद में सबसे मजबूती से इस मानसून सत्र में उठाने वाली है।
3: एक तो जिस तरह से महंगाई से लूट रही है जनता, और एक जो पेपर लीक नीट का किया है जिसे पूरे देश के 22 लाख होनहार विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसमें दर्जनों अकेले राजस्थान के कई बच्चों ने अपने जीवन लीला समाप्त किए है, और ये जो महिला आरक्षण बिल है वो अलग से पास किया हुआ है, इसका लागू करने की जो शर्तें उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और 33% आरक्षण जो भी आने वाली जो जनगणना और पुनर्गठन की शर्त है उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और पूरी जो इस ईरान युद्ध के कारण जो रेटें बढ़ाई थी पेट्रोल डीजल रसोई गैस की, वो तमाम वापिस लें। आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से पूरे देश में जो महंगाई की मार झेल रहे थे उसमें और गांव पे नमक छिड़कने का काम किया, तो ये तमाम मुद्दे, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, लाखों पद खाली हैं वो नहीं भर रहे हैं, और एक जो जनतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरह से खरीद फरोख्त पार्लियामेंट मेंबरों की कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सब मुद्दे होंगे।
1: आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल जी, आपकी जो पार्टी है शिक्षा स्वास्थ्य

0: स्वास्थ्य और संघीय ढांचे के मुद्दे को बहुत प्रखरता से उठाती रही है। मॉनसून सत्र को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है, और जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता, सिर्फ हंगामा करना उसकी रणनीति है।
1: देखिए, विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष जो है वो सदन को नहीं चलने देता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों के असल मुद्दों पे जवाब दिए जाएं। भाई, पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, 25 से ज्यादा बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया पिछले लगभग 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी इस पे चुप्पी साधे हुए है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पे लोग वोट मांग के आए थे, जिन लोगों को इन्होंने ट्रस्ट में नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे, वही लोग आज वहां पे डकैती डाल रहे हैं। हजारों करोड़ों का वहां से चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, वहां से इन्होंने जमीन में भ्रष्टाचार किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय जी, उन्होंने 23 करोड़ की जमीन लगभग 160 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। 18 दिन तक इन्होंने FIR रजिस्टर नहीं की। 18 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे तो इन्होंने FIR रजिस्टर की। एक फर्जी FIR, एक फर्जी SIT का गठन किया गया केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। और तीसरा प्रमुख मुद्दा जिस पे हम सरकार से सवाल कर रहे हैं वो E20 से जो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। भाई, सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा था कि लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, जो प्योर पेट्रोल भरवाना चाहे वो प्योर पेट्रोल भरवाए, जो E10 भरवाना चाहे, E20 भरवाना चाहे, उसे ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन आज वो मना कर रहे हैं। 2023 से पहले की बनी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो खराब हो रही हैं, वर्क स्टेशन पे लाइन लगी हुई है, सर्विस स्टेशन पे लाइन लगी हुई है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी गए पेट्रोल पंप पे, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। तो इन मुद्दों पे सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा जैसे ही संसद में विपक्ष इन मुद्दों पे सवाल करेगा, ये हंगामा करेंगे, ये जो है सदन को चलने नहीं देंगे। यही होता है और यही करते रहेंगे।
0: जफर साहब, आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं कि संसद के मॉनसून सत्र में आपने भी कहा कि आपने इशारा किया कि नंबर गेम आपके पक्ष में है, और जो परिसीमन और महिला आरक्षण का महापैकेज बिल है वो दोबारा आप लाने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें किस तरह के संशोधन हुए हैं? जब ये पिछली बार सदन में आया था तो ये विधेयक नहीं बन पाया था, इस बार सरकार उसमें किन प्रावधानों को जोड़कर या घटाकर पेश करने की कोशिश करेगी?
2: देखिए, अभी तो एक चर्चा का विषय है, जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उसमें संशोधन किया गया नहीं किया गया। लेकिन जो आपने जो पहले कहा कि आंकड़ों की जगह पर एक अपील जो हमारी थी उस वक्त बिल के गिरने के बाद कि देशहित के बारे में एक चुने हुए नुमाइंदों को सोचना चाहिए, वो अपील जो है जाहिर है लोगों ने समझा, परखा, सुना और जनता से चर्चा जरूर की गई, और अपने लीडरशिप को भी परखा होगा तो समझ में आया होगा कि ये अपने लिए काम करते हैं, ना कि देश के लिए या जनता के लिए। इसलिए आपने देखा कि वो नंबर जो बहुत ही गैप ज्यादा था उस वक्त, अभी अपने आप ही गैप खत्म हो गया है। और मुझे लगता है कि जब ये बिल पूरे तौर से चर्चा में आएगा तो बाकी चीजें भी जब साझा होंगी, सारी चीजें लोगों को जानकारी मिलेगी, उसके बाद ये बिल को समर्थन नहीं, प्रचंड बहुमत से बिल जो है पास होगा और एक जो लोगों का एस्पिरेशन है वो रियलिटी में बदल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो बचे खुचे लोग भी हैं, उनके जैसे अभी आपके स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, बट उनके लिए पार्लियामेंट में उनके ही लोग नहीं बचे, और जो लोग हैं थे उनके, वो जाहिर है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनके लीडर केजरीवाल साहब के बारे में बात कर रहे थे, वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं मरते हैं, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। झूठे वायदे करते हैं, जनता के मुद्दे से दूर पर्सनल मुद्दा ज्यादा एजेंडा चलाते हैं, मीडिया में अपने आप को हर वक्त इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और चाहते हैं कि मीडिया में चमकते रहे, तो ऐसे लोगों को उनके ही लोगों ने नाकार दिया। तो जनता के दरबार में तो जब जाएंगे पूरे तरह से नकारे जाएंगे, जो बचे खुचे लोग वो भी नकारे जाएंगे। लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के लेफ्टिनेंट जो पहले कभी हुआ करते थे, आज उनसे विपरीत अलग खड़े हैं, उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है कि देश हित में, देशवासियों के हित में स्टैंड होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो आंकड़े जो है, जो भी इसमें चेंजेस के बाद है, वो सभी को स्वीकृत होगा और कुछ पार्टियां क्रॉस वोटिंग भी सामने दिखेगी।
0: सुखदेव जी, आपसे ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने के साथ साथ क्रिएटिव पॉलिटिक्स करने की भी है, क्योंकि आपको भी जनता ने मैंडेट देकर अगर संसद पहुंचाया है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश हित में आप सरकार का सहयोग करें और कुछ रचनात्मक करें। क्या विपक्ष इस दिशा में भी सोच रहा है?
3: आपको मैं एक चीज बतला दूं, लोकतंत्र में जवाबदेही जो है विकल्प नहीं होता है, सरकार का संवैधानिक दायित्व तो होता है। हम अगर मुद्दों को उठाते तो इनके लिए राजनीति हो जाती है। क्या अगर हम नीट की बात

करे तो वो राजनीति है। क्या हम अंडमान निकोबार, जो ग्रेट निकोबार जिसमें आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट भी काट दे, वो राजनीति है? क्या अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, वो राजनीति है? क्या अगर हम सॉवरेन कंट्री है, अगर हम जैसे ट्रंप जो डिक्टेट कर वो हम फॉलो कर रहे, हमारे ट्रेड डील में 18% अगर वो कर रहे जो 33% था, वो राजनीति है क्या? क्या हम अगर ईरान के साथ, अगर आप जाते हो इसराइल जाते हो, ईरान वहां पे हमारा जो पुराना नेचुरल लड़ाई होता है वो आपसे नाराज होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर इस तरह की बातें, वो राजनीति है क्या? राजनीति जो राजनीतिक मंच है, राजनीतिक मसले हैं, उसका समाधान अगर राजनीतिक तरीके से नहीं किया जाए, डायलॉग से नहीं किया जाए, तो फिर कैसे होगा? आज मैं बता रहा हूं जो गंभीरता की जो बातें होती है, आज भी मैं कह रहा हूं सत्ता पक्ष आज भी अगंभीर है, सत्ता पक्ष आज भी अपनी जिम्मेदारी से भागती है। और इसलिए मैंने कहा कि राम मंदिर में केवल आस्था की चोरी नहीं है, वहां तो जिम्मेदारी की भी चोरी हुई है। और यही एक कारण है चंपत राय को बचाने के, वहां पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि एफआईआर नहीं और एसआईटी आपने गठन कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं।

0: आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चय है जो दूरदर्शी भी है और पहले आगाह वो कर देते हैं और उसको बाद में सरकार उन बातों को मानती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज होती है आप मेहनत से पास करो, एक है चोरी से पास करो। ये सरकार तो चोरी के द्वारा बनाई गई है, चोरी की सरकार भी है, जो लोगों को चोरी करती है, मतलब एमपी चोरी करती है, एमएलए चोरी करती है, सत्ता चोरी करती है ये, और ये हमें नसीहत देती है। रही बात जिस संविधान की 123वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो ये एक नैतिकता, हम अगर सार्वजनिक जीवन में है तो नैतिकता एक पक्ष होता है, नैतिकता एक शब्द होते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो रिजाइन करे अगर उसमें इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन क्या भारत के कानून क्या कहते हैं कि जब तक कोई आरोप जो है दोष नहीं होता है तो न्यायिक प्रक्रिया बीच में करा देंगे और आप प्रतिशोध ना लें, ये कौन क्या क्या गारंटी लेंगे? ये सरकार तो प्रतिशोध ही लेती है लोगों से, ये तो विपक्ष को खत्म करना चाहती है।
1: अमरा राम जी, जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है और नंबर गेम में नहीं होने के बावजूद रचनात्मकता में बाधा पहुंचाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या विपक्ष इस मॉनसून सत्र में एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
2: बिल्कुल, असल बात यह है कि जो मुद्दे हैं जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रचनात्मक क्यों नहीं दें? हम तो बिल्कुल, जहां भी देश के सवाल आया है निश्चित रूप से एकजुट होकर के, जिस तरह से आज अमेरिका के साथ डील की है, जो हमारे माल पे अमेरिका जाता था, निर्यात होता था, उसमें 3% की जगह 18% लगेगा और हमारे यहाँ 18 से 23 लगता था, वो जीरो अमेरिका का सामान आने पे होगा, तो देश की बर्बाद होगा, तो उसके साथ कैसे खड़े हो सकता है प्रतिपक्ष? ये जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की गलतियों को उजागर करना और जनता में जो बेदारी है उसको संसद में उठाना प्रतिपक्ष का है, और जो भी जो जनता के साथ है निश्चित रूप से वो सब मिलकर के उठाएंगे। सत्ता पक्ष जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, सर्वसम्मत कर दिया, तो इस शर्त को जनगणना और पुनर्गठन उसके साथ जोड़ने से क्या मतलब है? मतलब इसको बुनाने का, महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहते, जिस दिन सर्वसम्मत पास हो गया ये शर्तें जोड़ने की कहां जरूरत है? वो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए महिलाओं के आरक्षण को सामने रखने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये देश की जनता भी जानती है और संपूर्ण प्रतिपक्ष भी जानता है। जी
1: अनमोल जी, एक बार फिर आपके पास आते हैं। जफर साहब ने आरोप लगाया कि आपके खुद के लोग ही संसद में नहीं बचे तो आप क्या मुद्दों की राजनीति करेंगे? आप युवा हैं, क्या महिला बिल पर इस बार आपकी पार्टी कुछ सकारात्मक सोच रही है? एक और सवाल कि क्या विपक्ष इस बार एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
3: देखिए, सवाल आपका जो है वो सत्ता पक्ष से ये होना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते कि महिला विधेयक जो है वो पारित हो। 2023 में विपक्ष तो पूरा एकजुट था, हमने तो कहा था भाई आप जो है महिला रिजर्वेशन जो है तुरंत लागू करो, 33% रिजर्वेशन दो आप 543 सीट में। उस समय इन्होंने कहा कि नहीं जी अभी तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, उससे पहले सेंसस कराने की जरूरत है, 2011 के सेंसस पे देंगे तो महिलाओं के अधिकार मारे जाएंगे, उस समय बिल पास नहीं होने दिया। फिर 30 महीने बाद ऐसा क्या हो गया भाई? सेंसस तो उस समय भी नहीं हुआ था जब दोबारा ये महिला बिल लेके आए, हम तो तब भी समर्थन में थे कि आप रिजर्वेशन दीजिए, 33 क्यों, आप 50% रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को, महिलाओं को आधा अधिकार जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहते, ये महिला विरोधी पार्टी है, इनकी कभी मंशा नहीं रही कि ये रिजर्वेशन दे। पंचायती राज का जब बिल आया था तो इन्हीं के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने विरोध किया था उस समय 1990 के दौरान जब पहली बार महिला रिजर्वेशन का बिल आया था पंचायती राज में। दूसरी बात भाई, हमारी जो है मेजोरिटी नहीं रही, हमारे सांसद नहीं रहे राज्यसभा में, ये कह रहे हैं ईडी पार्टी के प्रवक्ता। भाई ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी कर रही है। चुनी हुई सरकारों को जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने वोट डाल के चुना है, उसे तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी सरकार कर रही है। ईडी और सीबीआई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तोता और मैना की तरह काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? ये लोकतंत्र के हत्यारे, ये संविधान के हत्यारे, जो दिन दहाड़े जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग के उन्हीं के घर में डकैती डाल दी, तो इनका तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता, ये तो किसी के सगे नहीं है। विपक्ष की पार्टियों को तोड़ के जिस तरह से ये मेजोरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि पूरे देश के लोगों का विश्वास इनके ऊपर से पूरी तरह खत्म हो चुका। ये इस बात को भली भांति जानते हैं। 400 सीट की मांग की थी इन्होंने लोकसभा चुनाव में, लोगों ने इन्हें केवल 240 सीट दी। उसके बाद से इन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया। कोई भी राज्य सरकार हो विपक्ष की, उसे तोड़ने का काम कर रही है ईडी पार्टी सरकार। और आप समाज का कोई भी तबका ले लीजिए, किसान इनसे परेशान।

0: है, जवान इनसे परेशान है, युवा इनसे परेशान है, छात्र इनसे परेशान है, व्यापारी इनसे परेशान है, तो इन्हें वोट आखिर क्यों देंगे वो लोग?
1: जफर साहब, आरोप प्रत्यारोप की बातों से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें और थोड़ी सकारात्मक चर्चा करें, क्योंकि आकाशवाणी के श्रोता जो दूर दराज से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक विकास, रोजगार और महंगाई को लेकर मॉनसून सत्र से पहले सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है।
2: देखिए, अब ग्लोबल सिचुएशन जो है वो आपके नजर में भी है, दुनिया देख रही है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन है। जब से ईरान, इजराइल और यूएस का जो एक जंग छिड़ी हुई है उससे पूरी दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल दिया है। ऐसे में भारत की स्थिति जो सबसे मजबूत स्थिति है, इसलिए कि भारत में आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है, महंगाई का दर भी हमारे जो वेल विद इन द लिमिट है। पहले जो यूपीए के सरकार में डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था, अभी तो आप देखिए सीपीआई इंडेक्स जो है वो जो हम 4 और 6 के बीच में जो हमने कहा है कि हम मेंटेन करेंगे इन्फ्लेशन, उसमें मेंटेन है। एमपीसी के द्वारा उस पर पूरा फोकस रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कि इन्फ्लेशन हमारा विद इन द रेंज रहे। और पूरे टाइम हमने 12 साल 13 साल में देखिए हमने उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। लेकिन कभी कभी सीजनल फैक्टर की वजह से, कभी कभी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, कभी कोई और कारण ऐसे आते हैं जिसके वजह से कोई स्कार्सिटी होती है जैसे, या उस डिसरप्शन होता है और उसकी वजह से प्राइस जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो खुदरा प्राइस में आ जाता है, उसका कभी न कभी इम्पैक्ट होता है। जैसे सीजनल फैक्टर में सब्जी और फलों के दाम बढ़ जाते हैं कभी, उसी तरह से कभी तेल के दाम बढ़ने से, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से उस पे असर आ जाता है, महंगाई पे असर आता है। बट ये सब टेम्पररी है, परमानेंट क्या है कि हालात जब नॉर्मल हो जाते हैं तो उस वक्त देखना चाहिए कि हमारा महंगाई दर क्या था और यूपीए के समय में नॉर्मल सिचुएशन में महंगाई दर क्या था। तो आपको साफ दिख जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की नीतियां मजबूत है, पॉलिसी मजबूत है और भारत की सरकार का गवर्नेंस मॉडल ऐसा है कि जिसमें महंगाई पर भी फोकस है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पर फोकस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर भी फोकस है और जो देश की अर्थव्यवस्था जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस पर सब तरह से खरी उतरे उसकी कोशिश। आज देखे जो रिजर्व्स है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो अपने आप में दर्शाता है कि देश की स्थिति बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है कंपेयर टू व्हाट इंडिया हैज सीन इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें अपने आप को दर्शाती है हमने आम लोगों के लिए क्या, और वेलफेयर स्कीम के बराबर हम चिंता करते हैं और इसलिए वेलफेयर स्कीम चलाते रहते हैं, उससे आम नागरिक को फायदा होता रहता है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, पेंशनर हो, सबके लिए हम स्कीम लेकर आए, सबके लिए चिंता करते हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ हर बजट में आता है और भी अलग अलग पॉलिसी मेजर्स आते हैं जिसमें हम उनकी चिंता करते हैं। इसीलिए आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश के लोग मजबूत हो रहे हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं और उन लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, वेलफेयर में जो परसेंटेज है पर कैपिटा का वो बढ़ता जा रहा है, उस बात को दर्शाता है कि लोग अपने सेहत पर भी अब ज्यादा ध्यान देते हैं, उस पर खर्चा भी करते हैं। ये सारी चीजें जो है देश को एक मजबूत स्थिति देने वाली सरकार जो है उसने ऐसे सिचुएशन पैदा किए कि देश की जनता और देश को दोनों बहुत कठिन समय में भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा।
1: सुखदेव जी, जैसा कि जफर साहब कह रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों का प्रभाव है, वैसे देश की स्थिति काफी सुदृढ़ है, प्रगतिशील है और दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जनता कांग्रेस पार्टी से ये भी समझना चाहती है कि अपार अनुभव और सत्ता में कई दशकों तक राज करने के बाद ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष रचनात्मक तरीके से समाधान भी सरकार को बताएगा या सिर्फ विरोध करेगा?
3: देखिए, निश्चित रूप से दो चीजें है, डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण चीज है सत्ता पक्ष और विपक्ष। इन्होंने कहा कि हम काफी जो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों के, आप देते हो राशन, देते 80 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज की बात कर रहे हो, आप गरीबी रेखा से ऊपर की बात करें, जो एमएसएमई का जो हालात है, जिस प्रकार जब मैं समझता हूँ जो हमारे पीएसयू थे उनको जिस प्रकार से लाउट अप कर रहे हो, तो आप कहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग, आपको हंगर ये पे इंडेक्स में आप कहाँ पे हो, हर जगह पे हैप्पीनेस में आप कहाँ पे हो। मैं आज भी, मेरा ये मानना है कि ये पक्ष विपक्ष ही बात नहीं है, हमारे लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है और देश कैसे समृद्ध हो, देश में जनता की बातें कैसे आए, जो सदन एक सर्वोच्च मंच था उसमें एक सार्थक भाष हो, सार्थक बातें हो और जिम्मेवारी लोग निभाए। और हमने कहा अगर विपक्ष किसी बातों को रखती है तो वो दुश्मन नहीं है, उन बातों को आपको देखना चाहिए। एक कहावत है ना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, आप उन बातों को लेके चले और क्या बेहतर हो सके उनको लेके चला है। आरोप प्रत्यारोप से महत्वपूर्ण है एक पारदर्शी और जिम्मेवारी के साथ अपने जिम्मेवारी को, अपने दायित्वों का निर्वहन करना।
1: अनमोल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता संसद से नतीजे चाहती है, न कि सिर्फ राजनीतिक आरोप।

0: प्रत्यारोप, आप युवा हैं, आपके अनुसार इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए?
1: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो आपने जैसा कहा कि हम युवा हैं, तो हम युवाओं के लिए चिंतित भी हैं, तो सरकार जवाबदेही तय करे। 100 पेपर लीक हो गए पिछले 12 साल में। हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पढ़ाया है इस उम्मीद में कि हमारा भविष्य बेहतर हो, उन्हें बेहतर जीवन मिल पाए। और जो लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं, वो कर्जा लेते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा और देश की प्रगति में भी वो अहम भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं ना, तो उनके सारे सपने टूट जाते हैं, उनके सारे अरमान टूट जाते हैं। कुछ लोग, जैसे हमारे 25 होनहार बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया, उन्हें इस तरह का रास्ता चुनना पड़ा। तो ये सरकार जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही? क्यों बचाया जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा? भाई, प्राइवेट जॉब में भी कोई गलती कर देता है तो उसे जो है टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ तो 100 पेपर लीक हो चुके, नीट एग्जाम के बाद 6 पेपर लीक हो चुके। मैं जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही, उसके भरोसे एक युवा देश को कैसे छोड़ दिया जाए? आप ये बताओ, जो जवाबदेही तय करने से भाग रही है। और लोगों के मुद्दे हैं, उस पर जवाब देना चाहिए ना सरकार को।
0: कार्यक्रम में समय कम है जफर साहब, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि संसद के मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे और देश की जनता जो हर सत्र से उम्मीद लगाए बैठती है, उसके लिए आपका क्या संदेश होगा?
2: देखिए, मैं जो अपोजिशन पार्टीज है उनसे बस एक ही अपील है कि बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, एंड आप एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने का जो दावा करते हैं उसी दावे को पूरी तरह से दिखाना चाहिए कि आप परिवार हित में नहीं, देश हित में काम करते हैं और उनके लोग जो है, उनके साथ जो बचे कुचे लोग हैं, उन्हें भी यही कहीं ना कहीं गाइडेंस देना चाहिए उनको कि भाई सब देश हित में काम करो और जो ऐसे बिल आए जिसमें देश के नागरिकों का फायदा, देश का फायदा है, तो जरूर उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो कहने के लिए कहते हैं कि हम एक यूनाइटेड ब्लॉक है, इंडी ब्लॉक, बट उन लोग आपस में इतना एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब कहने के लिए, ऑप्टिकली दिखाने के लिए, लेकिन हकीकत में कोई एक दूसरे के साथ खड़ा ही नहीं है। और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब इनको जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि आप जब आपस में मिले तो आप अपने पॉजिटिव जो सपोर्ट होना चाहिए उसको कीजिए उन मुद्दों पे जिन पे आपको भी लगता है कि देश हित में है और ये देश नीति के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए।
0: आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
3: संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पंवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपनी विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपरा के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा और पारित होने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय शौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुर्गन बैठक में उपस्थित रहे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देवार्लू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
5: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट

0: को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। इस बीच दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाकों में 160 किलोमीटर से अधिक लंबा रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चलित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत प्राप्त हुई थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कई स्थानों पर अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारतीय टीम ने ताजा समाचार मिलने तक 28वें ओवर में एक विकेट खोकर 168 रन बना लिए थे। 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government today convened an all-party meeting at Parliament House Annexe. The meeting was chaired by Raksha Mantri Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
3: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed, that has to be decided in the Business Advisory Committee.
2: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party. Lok Sabha Speaker Om Birla called on the business

0: भी बातचीत करेंगी। वे भारत मोल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा होगी। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ. मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉ. महापात्रा ने कहा कि भारत और मोल्दोवा के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। उन्होंने कहा कि रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
1: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
2: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
0: अमेरिकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया।
3: अमेरिका ने कहा है कि यह हमला जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि उन्होंने ईरान के तटीय निगरानी सेना और वायु रक्षा केंद्रों, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन ठिकानों पर हमले किए। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार इस कार्रवाई में खास तौर पर गार्ड को निशाना बनाया गया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि उसने ईरान के आहवाज में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिरा है। सेंट्रल खातम अल अंबिया मुख्यालय के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने चेतावनी दी है कि ईरान की सेना अमेरिका की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का करारा जवाब देगी। ईरान पर अमेरिकी हमले 8वें दिन भी जारी हैं। दोनों पक्षों के बीच हॉर्मुज जलडमरु मध्य पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष चल रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. हुसैन अली ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
4: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह मुलाकात भारत तंजानिया की अटूट साझेदारी और जांजीबार के साथ भारत के विशेष संबंधों को दर्शाती है। श्री राधाकृष्णन ने बेहतर सहयोग के माध्यम से साझा विकास को आगे बढ़ाने में तंजानिया और जांजीबार के साथ साझेदारी करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। डॉ. हुसैन अली ने चेन्नई स्थित IIT मद्रास परिसर का दौरा कर प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर उन्होंने IIT मद्रास जांजीबार परिसर की स्थापना, जल परियोजनाओं, ICCR छात्रवृत्ति और ITEC प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत के समर्थन की सराहना की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी आज सुबह जांजीबार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति डॉ. हुसैन अली उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत के 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: पेरू में एंडीज क्षेत्र में आए 5.5 तीव्रता के भूकंप से 5 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि अब तक लगभग 300 लोग विस्थापित हो चुके हैं। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भूकंप का केंद्र हुआनकायो प्रांत के सिकाया शहर से 2 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। पेरू के राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संस्थान ने कहा है कि लापता लोगों की संख्या के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। स्थानीय चर्च और कॉन्वेंट सहित कई इमारतें ढह गईं या उन्हें क्षति पहुंची। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंपों से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,119 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 346 मिलियन

0: अमरीकी डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता की घोषणा की है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने कहा कि यह धनराशि आपदा से प्रभावित परिवारों को आवास, बुनियादी ढांचे और मूलभूत सेवाओं में सहायता प्रदान करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच पर फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यू जर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी।
1: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार है। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयारज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई हैं। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान 4 बजे तक खुले रहेंगे। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
0: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 31 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 206 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। पूर्व विश्व चैंपियन और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को 21-17 से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना। जॉर्डन में अमेरिका के सैनिकों की मौत के जवाब में अमेरिका की सेना ने ईरान के पैरामिलिट्री इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर हवाई हमले किए। पेरू के एंडीज इलाके में 5.5 तीव्रता का भूकंप आने से 5 लोगों की मृत्यु और 20 से ज्यादा घायल। और अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले को लेकर दुनिया भर में फुटबॉल का जुनून। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेशमा तिवारी विथ द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. President Draupadi Murmu embarks on a 3-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania. US military launches airstrikes targeting Iran's paramilitary Islamic Revolutionary Guard Corps in retaliation of killing of American troops in Jordan. In Peru, 5 people killed and more than 20 injured after 5.5 magnitude earthquake struck Andes region. And football frenzy grips world as Argentina and Spain prepare for final battle of FIFA World Cup tonight. President Draupadi Murmu embarked on a 3-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania today. The visit to the 3 European countries is expected to provide fresh momentum to India's bilateral ties. The focus of the visit is on expanding cooperation in trade, investment, technology, innovation, education and people-to-people exchanges. Talking to Prasar Bharati, Ambassador to Moldova and Romania, Dr. Manoj Kumar Mohapatra has said that President Murmu's visit to these countries will be historic.
3: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova. Similarly, when we talk about Romania, and it would be basically in the more than 3 decades. So given that importance,

0: स्टे ट्यून्ड इन फॉर द न्यूज़ इन हिंदी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौन भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक

0: व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। यह जब्ती पिछले 3 हफ्तों में CISF की सुरक्षा में चल रहे कोयला क्षेत्रों में गहन अभियानों के दौरान की गई। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और एक निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 40 ओवर में 2 विकेट पर 267 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, the government today convened an all-party meeting at Parliament House Annex. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engaging in constructive discussions on key issues.
2: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
1: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party. Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other businesses proposed to be taken up during the session. Addressing the meeting, Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. President Draupadi Murmu embarked on a three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania today. The visit to the three European countries is expected to provide fresh momentum to India's bilateral ties with the three countries, with a focus on expanding

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking your calls on mutual fund related queries. But do remember, we do not address stock or company specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I'm Sarabjeet Kaur with my co-anchor, Subodh Mishra.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106. श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी. स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: थैंक यू.
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: Foreign portfolio investors infuse nearly 12,000 crore rupees into Indian equities so far in July. In bullion market, gold and silver prices extend downward slide last week, and domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings results and geopolitical developments for Qs next week.
1: Videshi portfolio niveshakon ne July mein ab tak bhartiya share bazar mein lagbhag 12,000 crore rupaye ka nivesh kiya. Sarafa bazar mein lagatar dusre hafte

0: सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों, कंपनियों की आमदनी और वैश्विक गतिविधियों पर।
1: And listeners, before we go any further in the program, may we once again remind you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: तो हम सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले खबरों पर नज़र डालते हैं सरबजीत। देखें आज क्या हाल रहा है इस हफ्ते एफपीआई का। लगातार चार महीने की बिकवाली का दबाव बनाए रखने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई ने जुलाई में लिवाली की है। इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार में उन्होंने 11,897 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सेमीकंडक्टर के वैश्विक व्यापार में कमजोरी से एफपीआई अब फिर से उभरते हुए बाजारों का रुख कर रहे हैं। देश के बेहतर आर्थिक संकेतकों और तिमाही आमदनी की अच्छी खबरों से विदेशी निवेशकों में उत्साह है, लेकिन अगर पिछले सप्ताह के आंकड़ों पर गौर करें तो एफपीआई ने भारतीय शेयरों से 3,260 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। सरकार की टैक्स नीति में बदलाव के बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजार में लगातार दिलचस्पी दिखाई है। जुलाई में अब तक उन्होंने एफएआर के जरिए 7,492 करोड़ रुपए और जनरल रूट से 4,480 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
1: और गुरुग्राम से कांता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कांता जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछे। जी,
2: मैं ये पूछना चाहती हूँ मैडम।
0: जी, सवाल पूछे। जी
2: जी, मैं चाहती हूँ कि जो पीपीएफ होता है ना, पीपीएफ में निवेश करना बैंक में कितना सुरक्षित है? बैंक जैसे पोस्ट ऑफिस में तो पैसा मरता नहीं कभी, और बैंक का कोई पता नहीं होता, तो मैंने बैंक में पीपीएफ खोला, वो कितना सुरक्षित है?
0: पीपीएफ में पैसा कितना सुरक्षित है?
3: कांता जी, पीपीएफ क्योंकि एक गवर्नमेंट की स्कीम है और ये फिक्स्ड इनकम एक्सपोजर आपको प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, और ये काफ़ी लंबे 15 साल के लिए आप अपना पैसा यहाँ डालते हैं। यहाँ पर भी एक तरीके की कंपाउंडिंग होती है कि आप जो डालते हैं उस पर आपको एक इंटरेस्ट मिलता है, और फिर वो इंटरेस्ट जुड़ के आपके उस टोटल अमाउंट पर आपको एक तरीके का ब्याज है जो मिलता रहता है। तो इसकी सुरक्षा जितनी भी स्कीम्स एग्जिस्ट करती है उनसे काफ़ी ऊपर है। तो आप बिल्कुल इसमें अगर निवेश कर रहे हैं तो बिना इस चिंता के आप बिल्कुल अपना निवेश जारी रख सकते हैं।
0: जी स्नेहा, जब पीपीएफ की बात आती है तो कई बार लोग पूछते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से कि पीपीएफ कितना शेयर रखें, और ख़ासकर जब पहले जो ओल्ड टैक्स रिजीम था उसमें इसके फायदे दिखते थे, क्या आप बदले हुए हालात में इसका क्या सीन है, क्या रखना चाहिए?
3: एक बात तो ये है कि अगर आप पहले के समय में रख रहे थे तो क्योंकि एक लंबे टाइम के लॉक इन के साथ आता है, तो वो पैसे
0: तो रहेगा ही,
3: रहेंगे ही उसमें। बट देखना इस प्रकार से चाहिए कि हमें इक्विटी और डेट में अपनी एलोकेशन कितनी रखनी है। अगर आप डेट में लंबे समय के लिए कोई एलोकेशन रखना चाह रहे हैं तो पीपीएफ एक्चुअली एक काफ़ी अच्छा विकल्प हो जाता है, क्योंकि उसमें आप ये जो एक सेफ्टी की बात अभी हम कांता जी से डिस्कस कर रहे थे वो भी एक लेवल अप रहती है, और क्योंकि जितना इंटरेस्ट इसमें आज आपको मिल रहा है ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, वो भी टैक्स फ्री मिल रहा है, जो कि मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में लोग चाह रहे होते हैं कि मिल जाए। और फिर इंडिया हैज़ लॉन्ग बीन अ फिक्स डिपॉजिट वाली एक मार्केट रही है, तो गारंटी से हमें काफ़ी प्यार है, तो ये वो हमें ऑफर करती है। तो हम अगर डेट एलोकेशन लंबे समय के लिए रखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इसमें रख सकते हैं।
0: जी, अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से अमित, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: हेलो मार्केट, दिस इज अमित। सो माय क्वेश्चन रिलेटेड, लाइक आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी एज एन अर्निंग एज अ सैलरी इनकम, एंड माय मदर इज

0: also getting pension. So I have transferred my mutual funds to my mother, and when I'm filing my income tax return in a new regime, both for myself and my mother, so it is showing of like of rupees around 10 lakhs and under the like the off-market transaction credit in EIS and TIS statements. So I want to know whether how this tax whether I have to pay any tax or how the tax calculation will be done while filing the this return like for me and for my mother, like I transferred the mutual funds.
1: मुझे लगता है स्नेहा कि ये म्यूचुअल फंड से ज्यादा इनकम टैक्स का सवाल है और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप इस पर बेहतर सलाह ले पाएंगे.
2: लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम हैदराबाद. सौरभ जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
3: गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा.
2: गुड इवनिंग.
3: माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड रीबैलेंसिंग. आई जस्ट वांट टू आस्क that let's say on 1st of August I have to rebalance for the yearly rebalancing. So in one of my let's say asset that is the mid cap or small cap, I have now more than my stipulated percentage. So for the next year, should I immediately sell off that thing, or I should reduce my SIP for the next year in that mid cap or small cap? Thank you.
4: Right. So Saurav, it's great actually that you're looking at, you're giving a holistic view to your portfolio annually. So kudos on that. On the aspect regarding your mid and small cap have turned heavier as per your targeted allocation. What you can also do is at this point, let's say if you're looking at rebalancing and you have some debt allocation in your portfolio, maybe you can increase that a bit and eventually it should settle out. Because if your funds are doing reasonably well, they have been, let's say, generating healthy returns for you, then there is no point of selling it just for the rebalancing aspect. The other way of looking at it would be increasing, let's say, your debt allocation to some extent. And yeah, that should be helpful.
1: जी, अगले कॉलर के पास चलें सरबजीत.
2: जी, चिन्नई काशीनाथ जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
5: गुड इवनिंग मैडम.
2: गुड इवनिंग.
5: मेरा प्रश्न ये है कि मेरा पास एक स्मॉल कैप है टाटा स्मॉल कैप और दो फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप और जेम फ्लेक्सी कैप. इस तीनों फंड के बारे में क्या अच्छा है, इस पे बने रहना चाहिए? हर फंड में 2,000 जा रहा है, ये क्या अच्छा है कि आपका जानकारी चाहिए? धन्यवाद.
4: तो जो आपने पोर्टफोलियो बताया कि आप दो स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हैं और एक फ्लेक्सी कैप में, इस लिहाज से मुझे लगता है कि आपका स्मॉल कैप एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा रह सकता है सिंस आप इक्वल अमाउंट इन तीनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि स्मॉल कैप हमारे पोर्टफोलियो का एक थोड़ा छोटा हिस्सा रहे, बहुत ज़्यादा ओवरपार ना कर ले. क्योंकि होता क्या है, लंबे समय में ये देखा गया है कि बीच बीच में स्मॉल कैप, जब मार्केट गिरती है तो स्मॉल कैप में जो फॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप ऐसे करें कि अगर आप स्मॉल कैप में जो एलोकेशन कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप एक और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर लें, ताकि जो आपका एक पोर्टफोलियो का होलिस्टिक व्यू है वो थोड़ा बैलेंस हो पाए. बस इतना इंश्योर करना कि जब वो उतार चढ़ाव हो रहा है स्मॉल कैप में, तब आप डरे नहीं, आप अपनी SIPs को कंटिन्यूड रखें. क्योंकि वही लंबे समय में आपको एक ही स्ट्रैटेजी होती है जो आपको आपका रिटर्न, आपका कमाई का मैक्सिमम बेनिफिट आपको दे सकती है. तो आप देखिए, अगर आप एक और फ्लेक्सी कैप में आपके पास सरप्लस है तो SIP स्टार्ट कर लीजिए.
1: जी, दिल्ली से आकाश जुड़ गए हैं. आकाश स्वागत है आपका, सवाल पूछें. लगता है आकाश से हमारा संपर्क टूट गया है. अगले कॉलर भी हमारे साथ हैं सरबजीत.
2: यस, आवर नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम फरीदाबाद. सुभाष जी सवाल पूछें.
6: हाँ नमस्कार सर.
2: जी नमस्कार.
6: मैडम अभी आप बता रहे थे कि फॉरेन इन्वेस्टर अभी इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, तो मैं ये जानना चाहता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ उनको इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किया है क्या? जैसे डेप्ट फंड में उनका टैक्स रिबेट का दिया था, ऐसा ही कोई इक्विटी फंड में भी दिया है? और दूसरा ये है कि वो कौन सी स्कीम में इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर, ये कुछ पता चल सकता है?
1: वो जिस खबर की बात कर रहे हैं, मैं वो साफ़ कर दूं कि वो इक्विटी फंड नहीं है, उन्होंने भारत के शेयर बाज़ार

0: में निवेश किया है और डेट फंड में भी नहीं है, वो डेट मार्केट में है, वो भारत के पूंजी बाजार का ही हिस्सा है। तो मुझे लगता है ये जवाब काफी होगा हमारे श्रोता के लिए। जी अगले कॉलर के पास चले हम।
1: यस, लेट्स कनेक्ट विद आकाश फ्रॉम दिल्ली।
0: जी आकाश।
2: मुझे दो बातें पूछनी है। एक तो ये पूछना है कि जैसे म्यूचुअल फंड के बारे में हम ब्रांच में जाते हैं तो वो अपने एजेंट के द्वारा हमें कुछ चीजें बताते हैं, तो वहाँ कंफ्यूजन रहता है, वो अपनी ही कंपनियों के बारे में ज्यादा हमें राय देंगे, और क्योंकि हम लोग की FD है तो हम लोग एक राय ये लेना चाहूंगा FD के बारे में कि हम एक साल के बाद मैच्योरिटी के बाद ही लें तो ज्यादा बेनिफिट है, या हम हर महीने या 3 महीने बाद अपना से बनाए, क्योंकि वो कहते हैं कि आप मैच्योरिटी के बाद लेंगे तो आपको एक साल के बाद कंपाउंड ब्याज मिलेगा। कंपाउंड ब्याज तो हम वो समझे ना, चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, और ये साथ में ये सारे एक्सपर्ट आते हैं। आप लोग कहीं, आपका ऑफिस भी होता है जहाँ आप लोग आम आदमी जो म्यूचुअल फंड में जाना चाहता है, आपसे राय लेना चाहता है, क्योंकि आप आकाशवाणी में आते हैं तो आपका विश्वास ज्यादा बना रहता है। धन्यवाद
1: जी। आकाश जी, आपकी वॉइस में थोड़ी डिस्टरबेंस थी, जितना मैं समझ पाई हूँ आप कहना चाह रहे हैं जब आप बैंक में म्यूचुअल फंड्स बाय करने जाते हैं तो वो आपको अपनी ही कंपनी के फंड्स सजेस्ट।
0: जी ऐसा अक्सर होता है।
1: हाँ बिल्कुल, ऐसा अक्सर होता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च जो हम कर सकते हैं वो करके जानी चाहिए। जब आपको आप आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल होता है, जब आप इतना समझ पाते हैं कि अगर आपको 5 साल से ज़्यादा के लिए करना है तो आप इक्विटी फंड्स देखना चाहेंगे, तो आप उनमें चुनाव कर सकते हैं कि कौन सा जो जिसका खर्चा कम है, जिसने मार्केट के उतार चढ़ाव लंबे समय में देखे हुए हैं और उनसे आपको एक हेल्दी रिटर्न जनरेशन रही है, पर लंबे समय में, छोटे समय में नहीं। एक साल में कोई अच्छा बुरा कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मार्केट ही लॉन्ग टर्म एक तरीके के लॉन्ग टर्म जनरेशन, वेल्थ जनरेशन के लिए है। अगर आपका गोल 3 साल से कम के लिए है तो हम डेट फंड्स देखेंगे। अगर आप पहली दफ़ा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम हाइब्रिड फंड्स देखेंगे। इतना भी अगर हम समझ के जाते हैं तो जब कोई हमें गलत चीज़ बेच रहा होता है या जो हम नहीं चाहते हैं वो बेच रहा होता है, वी कैन ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चंस। जब हम सवाल करते हैं तो फिर हमें जवाब सामने वाला जिस तरीके से दे रहा होता है उसमें हम एक इन्वॉल्वमेंट रह पाती है, और क्योंकि सामने वाला ये समझता है कि वो काफ़ी नॉलेजेबल है, वो आपको एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। बट अगर आप खुद से कुछ फंड्स का चुनाव करके जाते हैं और आप उन्हें बोलें कि आपकी आपको इन्हीं में करना है, तो मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप अपना स्टैंड रखिए और आप फिर इन्वेस्ट करिए। और अगर बैंक के थ्रू आप नहीं कर पाते हैं तो, और आप अगर मान लीजिए डिजिटली आप काफ़ी सोफेस्टिकेटेड हैं, तो आप AMCs की वेबसाइट पे जाकर, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके फंड का चुनाव कर सकते हैं जो आपको, जिसमें इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपको बेच रहे हैं आप उसी में निवेश कीजिए। दूसरा, जो आपने बोला कि FD एक साल की लेनी चाहिए या ज़्यादा की लेनी चाहिए, मेरी समझ में अगर आप इफ़ एट ऑल फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि जो आपका जितने समय का गोल है आप उतने समय के लिए वो वाले टेन्योर की FD लें। क्योंकि होता क्या है कि अगर वो मान लीजिए आपका मैच्योर होता है, वो वापस आता है, आप और उसी समय ज़िंदगी में कुछ ऐसा सर्कमस्टांस आ जाता है जहाँ पे आपको लगता है अच्छा यही इस्तेमाल करके अपना वो कंज्यूम कर लेते हैं पैसे, तो मतलब जब मैं सोचती हूँ इन्वेस्टमेंट का तो मुझे लगता है कि गोल के साथ अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट जोड़ते हैं तो एक बेटर वैल्यू मिल पाती है आगे जाकर, और जो इंटरमिटेंटली हम कंज्यूम कर लेते हैं उसका डर खत्म हो जाता है।
0: जी अगले कॉलर है दिल्ली से दिनेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
3: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
0: जी
3: मैं दो बातें पूछना चाहता हूँ। एक तो ये है कि म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जो मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, फंड कैसा भी परफॉर्म करे फंड मैनेजर को अपने चार्जेस मिल जाते हैं। ऐसा क्या नहीं होना चाहिए कि अगर इंडस्ट्री एवरेज से बेटर परफॉर्म कर रहा है तो मैनेजर को बेटर चार्जेस मिले, और अगर इंडस्ट्री से एवरेज से कम परफॉर्म किया है तो वो कम चार्जेस लेकर बाकी चार्जेस NAV में ऐड कर सके। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूछना चाहता हूँ कि गोल्ड ETF और सिल्वर ETF में से किसमें इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। थैंक यू
1: जी। दिनेश जी, आपका जो पहला

0: सवाल है ये, जब भी मार्केट अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही होती है तब बिल्कुल जो लंबे समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उनके दिमाग में ये आता है, और हाल फिलहाल में सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस लिंक्ड एक्सपेंस की बात करी थी, जिसका बिल्कुल यही माध्यम था कि जब कोई फंड अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो मतलब इन्वेस्टर को उसमें रहने का एक फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर मैनेजमेंट को भी उसका जो प्रोपोर्शन है जो एक एक्सपेंस के तौर पे मिलता है वो उसी रिलेटिवली टू द परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, तो कम ज़्यादा परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको मिले. बट इस पर अभी ये बस एक सर्कुलर है, इस पर कुछ और डेवलपमेंट नहीं हुई है. AMCs ने अभी इसको इनेबल नहीं करा है, या फिर इस पर क्या थिंकिंग चल रही है ये सब, मतलब अभी टाइम जैसे जैसे आगे जाएगा तभी हमें पता चलेगा. बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि दिनेश जी, सुना है ये सेबी ने, रेगुलेटर ने, देखते हैं इसके आगे होता क्या है. एक बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि माना वो एक्सपेंस ले लेते हैं, बट इसकी वजह से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो हम जारी रख रहे हैं उसको पॉज या स्टॉप नहीं करना चाहिए. हमारा नज़रिया ये रहना चाहिए कि अगर कुछ 3 साल तक या फिर मतलब वो परफॉर्मेंस आपको उतना नहीं बेनिफिट दे रही है तो आप बिल्कुल उसमें अपनी SIPs पॉज करके एक दूसरे फंड को देखिए. बट छोटे समय में इस तरीके की थॉट से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पे पॉज ना लगाइए. और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि गोल्ड ETFs और सिल्वर ETFs में से किसका चुनाव करना चाहिए, तो बेसिकली ये एक तरीके का ऐसा एक्सपोजर है कि आपको मेटल में एक्सपोजर लेना है, समथिंग बियॉन्ड इक्विटी, जो इक्विटी के उतार चढ़ाव के साथ आपको एक तरीके का बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं. तो गोल्ड का जितना हिस्ट्री देखी गई है वो इतना ये प्रोवाइड कर पाता है, प्लस गोल्ड ETFs ज़्यादा पुराने हैं और ज़्यादा वेराइटी अवेलेबल है मार्केट में उनकी. तो आप चुनाव किसी का भी कर सकते हैं, बट गोल्ड की हिस्ट्री क्योंकि ज़्यादा है तो उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, जिसको आप जब आप खरीद बेच करते हैं मार्केट में, तो शायद एक बेटर निवेश वो रह सकता है. बट इंश्योर बस ये करना है कि मेटल में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक्सपोजर 10% से ज़्यादा ना रहे आपके पोर्टफोलियो का.
1: ऑल राइट, आवर नेक्स्ट कॉलर इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली. योगेश जी, सवाल पूछें.
2: जी नमस्कार डॉक्टर जी को, मेरा सवाल ये है कि ICICI क्या, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि उसके लिक्विड फंड में हमने जो पैसे डाले थे तो उसमें विड्रॉ करने पे 7 डेज के अंदर अगर हम विड्रॉ करते हैं तो पेनल्टी का चार्जेस था, जबकि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में और शॉर्ट टर्म फंड में आप डालने के अगले दिन भी निकाल सकते हो, उसमें कोई पेनल्टी नहीं है सर, जबकि उसका जो मैकाली ड्यूरेशन है वो ज्यादा का है. तो ऐसा क्यों होता है कि लिक्विड फंड में ज्यादा लिक्विडिटी होनी चाहिए बट उसमें 7 डेज का लॉक इन है? और दूसरा सवाल है कि भारत 22 फंड ऑफ फंड
0: जी. योगेश जी, कुछ समय पहले सेबी ने ये नोट करा था कि लिक्विड फंड्स में मतलब एक एग्जिट लोड की काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि लोग बीच में डाल के जल्दी निकाल रहे थे, और लिक्विड फंड एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे जो बड़ी कंपनीज के ट्रेजरीज होते हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं. इसलिए हम देखते हैं कि हर एक क्वार्टर के एंड में बहुत ज़्यादा पैसा लिक्विड फंड से या तो निकलता है और एक क्वार्टर के बाद वापस आ जाता है. तो ये होता इस वजह से है कि बड़े ट्रेजरी कॉरपोरेट्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एडवांस टैक्स पेमेंट्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं. तो जब वो एक दिन पहले डालते ही निकाल लेते हैं तो एक इम्पैक्ट ऐसा हो जाता है कि उन्होंने तो पैसे निकाल लिए पर उन पे कोई चार्ज नहीं लगा कम समय की इन्वेस्टमेंट के लिए. तो चीज़ों को थोड़ा बैलेंस रखने के लिए सेबी ने ये इंट्रोड्यूस करा था कि 7 दिन के लिए एक बहुत ही मामूली सा एग्जिट लोड लगेगा, बट जब ये बड़े अमाउंट पे लगता है तो वहाँ पे वो खर्चा ज़्यादा लगता है. और बाकी आपने सही नोटिस करा है कि बाकी के डेट फंड्स में ऐसा कोई एग्जिट लोड का स्पेसिफिकली कोई ड्यूरेशन या फिर ऐसा नहीं है कि आपके पास वहाँ अप्लाई होता है, जनरली डेट फंड्स में नहीं होता है. लिक्विड में ये इंट्रोड्यूस करा गया था स्पेसिफिकली. तो बट इन एनी केस हम जब लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतना इंश्योर कर सकते हैं कि इतने कम समय के लिए ना करें तो हमारा फ़ायदा रहेगा.
3: जी, और देखते हैं सोने चांदी का क्या हाल रहा है. सर्राफा बाजार में लगातार दूसरे हफ्ते भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई. मजबूत अमरीकी डॉलर, ट्रेजरी यील्ड्स में बढ़ोतरी और इस आशंका से निवेशकों का भरोसा डगमगा गया कि अगर पश्चिम एशिया में टकराव बढ़ता है तो अमरीकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाएगा. MCX में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 1.8% की गिरावट आई और ये 1,40,906 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ.

0: सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 3% गिरकर 2,16,013 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। कॉमेक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 2.3% की गिरावट आई और ये $4,018.80 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ। इसी दौरान सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 6.4% गिरकर $56.33 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुई।
1: मैं योगेश जी को एक ये चीज़ भी बताना चाहूँगी, ये जब एग्जिट लोड लगाया गया था उसका एक ये भी रीज़न था टू एनकरेज जो ये कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स, मैं आपको बता रही हूँ कि ये ओवरनाइट फंड में लगाएं लिक्विड के बियॉन्ड, बिकॉज ओवरनाइट इन एनी केस एक दिन के पेपर में इन्वेस्ट करते हैं जिसके लिए वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं जो कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स हैं, तो ये भी एक रीज़न था वहाँ पे।
2: ऑल राइट, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम जयपुर। जितेंद्र जी सवाल पूछे।
3: हाँ मैडम, देखिए मेरा दो सवाल है। जैसे अभी तो वैसे मार्केट डाउन है, तो कोई नया फंड हाउस कोई नया फंड लेके आया है तो अब तो उसका एंट्री जो है बहुत नीचे लेवल पे रहेगा, तो इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? नया फंड हाउस है और नया स्कीम है तो डाउन है मार्केट, पहला प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न है कि मैडम अब पिछले एक साल से एक सिस्टम निकल गया कि हम अपना यूनिट जो है गिफ्ट कर सकते हैं, तो मैंने अप्लाई किया और मैं ऐसा कर भी पाया, बहुत ईजी था, तो ऐसा क्या डीमैट में भी है क्या?
1: जी जितेंद्र जी, जो आपका पहला सवाल है कि नया फंड आ रहा है, मार्केट डाउन है, नीचे से स्टार्ट होगा, इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगी जब भी कोई नया फंड आता है तो सबसे पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या ये कुछ ऐसा एक्सपोजर दे रहा है जिसमें ए मेरे और पोर्टफोलियो में इसका एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, एज इन इसमें कुछ ऐसी यूनिक बात है टू ऑफर टू यू कि ये आप चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो फिर उससे क्या होगा कि आप कि कोई और वजह देखेंगे ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा, कुछ अगर ऐसा थीम आ रहा है जिसमें आपका जो एक बिलीफ होता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा है, आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसा एक्सपोजर हो, आपको लगता है कि ये स्टॉक ये जो थीम है वो आपको आगे जाके बेनिफिट देगा, तो बिल्कुल आप फिर उसमें इन्वेस्ट करिए। ये दो रीजंस अगर आपके इसमें टिक होता है कोई ये जो नया फंड आ रहा है उसका बॉक्स, तो बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्ट करिए, बेझिझक करिए, क्योंकि आप लंबे समय के लिए करेंगे तो जो आपका एंट्री पॉइंट है वो उस तरीके से मैटर नहीं करता। SIPs के थ्रू आप एम करेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा लंबे समय में।
0: जी अगले कॉलर हैं भोपाल से शंकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: नमस्ते मैडम। नमस्ते मार्केट मद्रा टीम। मैडम मेरा सवाल है, ये करंट सिनेरियो में जब रिटर्न सारे टेपर होते जा रहे हैं इन एन एक्टिव फंड एंड स्मॉल और मिड कैप और फ्लेक्सी कैप, तो क्या वुड यू एडवाइज फॉर करंट SIP जो हम लोग शुरू कर रहे हैं या जो चल रही है टू स्विच टू एन इंडेक्स फंड, और एक्टिव फंड वुड स्टिल बी ए बेटर बेट फॉर अ लॉन्ग टर्म 5 साल प्लस टेन्योर SIP से 10,000 की या 15,000 की जो भी SIP चल रही है, आपकी एज एन एक्सपर्ट व्हाट वुड बी एडवाइस, एन एक्टिव फंड मैनेज फंड और एन इंडेक्स फंड फॉर लॉन्ग फाइव?
1: सो शंकर, द डिबेट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फंड्स डज नॉट रियली स्टैंड अप ऑन द करंट मार्केट सिनेरियो, इट एक्चुअली इवॉल्व्स ऑन द फैक्ट दैट लेट्स से इफ यू आर समबडी हु इज नॉट ओके विद एक्टिव मैनेजमेंट, और लेट्स से यू डू नॉट बिलीव दैट अ फंड मैनेजर विल बी एबल टू डू जस्टिस टू यू एंड दस द फीस ऑल्सो यू वुड नॉट लाइक टू पे, देन द पैसिव फंड मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली बिकम्स योर डी फैक्टो चॉइस। Other than that, let's say for somebody who does not really have any experience in the market, he or she can simply start with a passive fund. So if you are already invested in either passive or active, I would say this is not really any reason to stop those and move on to a different fund or a different management strategy. The issue being that, of course, in large and mid-cap, passives have, especially in large caps, passives have taken over, but there are a few funds who are able to beat the index as well, and if you are investing in those then you might as well continue. Same goes for mid cap, and in small cap passive really has a long way to, you know, beat active management, so there also active works best.
2: Let's ask our next caller from Ghaziabad. Ashu ji, sawal puche.
5: Yeah, very good evening. Actually, I wanted to know the prospects of Invesco Contra Fund and if it is good to invest for Invesco Contra Mutual Funds in the current market situations. The second one is Mirae large cap and mid cap. What

0: ஒரு பெண்ணாகி. தொடர்வது செய்திகள்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஆஷுதோஷ். संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। CISF ने कहा कि यह गहन कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद की गई है। बैठक में गृह मंत्रालय ने शून्य कोयला लीकेज हासिल करने, देश के कोयला संसाधनों से अवैध रूप से कोयला निकालने और चोरी तथा संगठित डकैती पर अंकुश लगाने के लिए लक्षित और समयबद्ध उपायों के निर्देश दिए। सरकार देश भर में मशीनीकृत स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते योजना को एक प्रमुख पहल के रूप में लागू कर रही है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में कल सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार

मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इससे पहले इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 387 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 7 विकेट खोकर 360 रन ही बना सकी। अमरीकी सेना ने कल ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा है कि यह हमला जॉर्डन से अमरीकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज पिछले विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ಸಾಂಗ್ ತೀಮ್ ತರಿಗಿಡ್ತು ತಾಂಗ್.

0: இத்தொடர்பத்தை ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ராஜஸ்ரீ த்ரிவேதி. संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं. सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की. मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया.
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं. मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था. लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने.
1: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है. पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी. श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के बिस्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संकराइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी. यह विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने का केंद्र है. उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में कुल 1400 मीट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी. श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूचबिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2-2 गोदामों का उद्घाटन भी किया. सहकारिता मंत्री ने एक सरकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है. CISF ने कहा कि यह गहन कार्यवाही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद की गई है. असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है. 7 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 57,000 से अधिक हो गई है और एक व्यक्ति के मरने की खबर है. अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने सेना और वायुसेना को बचाव और राहत कार्यों के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उन्होंने अपने 4 मंत्रिमंडल सहयोगियों को ऊपरी असम का दौरा करने और हाल ही में आई बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 3 जिलों में बचाव और राहत कार्यों का जायजा लेने का निर्देश दिया है. इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में

0: தொடர்புடைய செய்திகள்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ராஜஸ்ரீ த்ரிவேதி. संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं. सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की. मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा का आग्रह किया.
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं. मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था. लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने.
1: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है. पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी. श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के बिस्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के शंकराइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी. यह विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने का केंद्र है. उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में कुल 1400 मैट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी. श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूच बिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मैट्रिक टन क्षमता वाले 2-2 गोदामों का उद्घाटन भी किया. सहकारिता मंत्री ने एक सहकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है. पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं. असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 राजस्व सर्कल और 298 गांवों के 57,199 लोग प्रभावित हुए हैं. शिवसागर जिले के अमगुरी राजस्व सर्कल में बाढ़ से संबंधित एक मौत की सूचना मिली है, जिससे राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब तक 5 हो गई है. राज्य सरकार ने 14 राहत शिविर बनाए हैं. इस बीच शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जिलों में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. बदलते हालात को देखते हुए असम सरकार ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना से अनुरोध किया है कि जरूरत पड़ने पर निकासी और बचाव कार्यों में सहयोग के लिए वे तैयार हैं. पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. फीफा विश्व कप फुटबॉल 2026 का मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन के बीच न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में जारी है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा. इस पर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी. पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय में भारत को 27 रनों से हराकर लंदन के लॉर्ड्स में 2-1 से श्रृंखला जीत ली है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

0: 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी। श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के विश्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संकराइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। यह विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने का केंद्र है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में कुल 1400 मीट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी। श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूच बिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2-2 गोदामों का भी उद्घाटन किया। सहकारिता मंत्री ने एक सहकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 राजस्व सर्कल और 298 गांवों के 57,199 लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने 14 राहत शिविर बनाए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनता की सुरक्षा और कल्याण राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा विश्व कप 2026 का फुटबॉल का बहुचर्चित फाइनल मुकाबला न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन के बीच चल रहा है। 90 मिनट के खेल के बाद दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर है। अब जीत के लिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रनों से हराकर लंदन के लॉर्ड्स में 2-1 से श्रृंखला जीत ली। जैकब बेथल को प्लेयर ऑफ द मैच और जो रूट को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित गुयाना में 133 यात्रियों और चालक दल को ले जा रही एक सरकारी नौका पलट गई। अधिकारियों ने बताया है कि अब तक 67 लोगों को बचा लिया गया है। लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। गुयाना के सरकार की ओर से बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ने बताया कि MV बारिमा नौका राजधानी जॉर्जटाउन से उत्तरी अटलांटिक तट के किनारे पोर्ट कैटुमा की ओर जा रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। The monsoon session of

0: இனிய ராகம் கேட்டீர்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஆஷுதோஷ். संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेता

0: ताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। CISF ने कहा कि यह गहन कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद की गई है। सरकार देश भर में मशीनीकृत स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते योजना को एक प्रमुख पहल के रूप में लागू कर रही है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 राजस्व सर्कल और 298 गांवों के 57,199 लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने 14 राहत शिविर बनाए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनता की सुरक्षा और कल्याण राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। उत्तरी इराक में एक ईरानी ड्रोन को नियंत्रित तरीके से नष्ट करने के दौरान मारे गए तीसरे अमरीकी सैनिक की मौत की खबर है। इससे पहले अमरीकी केंद्रीय कमान ने जॉर्डन में अज्ञात शवों का पता लगाने की बात कही थी, जहां एक अलग ईरानी हमले में 2 अमरीकी सैनिक मारे गए और 1 लापता था, लेकिन अब कुल मिलाकर 3 अमरीकी सैनिक मारे गए हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में स्पेन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर नया चैंपियन बन गया है। यूरोपीय चैंपियन स्पेन ने विश्व कप के इतिहास में दूसरी बार यह खिताब जीता है। वह 16 साल के बाद फिर से चैंपियन बना है। फेरॉन टॉरेस ने विजयी गोल किया। अविजित रहने के मामले में स्पेन ने इटली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित गुयाना में 133 यात्रियों और चालक दल को ले जा रही एक सरकारी नौका पलट गई। अधिकारियों ने बताया है कि अब तक 67 लोगों को बचा लिया गया है। लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रनों से हराकर लंदन के लॉर्ड्स में 2-1 से श्रृंखला जीत ली। जैकब बेथल को प्लेयर ऑफ द मैच और जो रूट को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। The monsoon session of Parliament will commence today and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government had yesterday convened an all-party meeting at Parliament House Annexe. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties

0: தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सदस्यों ने इस सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी और अन्य प्रस्तावित कार्यों पर अपने विचार साझा किए। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, अर्थपूर्ण भागीदारी और उच्चतम संसदीय परंपराओं के अनुपालन के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है और ना ही

ऐसी कोई अनुमति मांगी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने कल समान नागरिक संहिता UCC विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में हुई बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ये विधेयक आज से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध कोयला जब्त किया है। ये जब्ती पिछले 3 सप्ताह में कोयला क्षेत्रों में CISF के गहन अभियानों के दौरान हुई। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया। सरकार देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए सफाई कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक गरिमा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता तंत्र नमस्ते योजना लागू कर रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित इस योजना का उद्देश्य मशीनीकृत सफाई, कौशल विकास और कल्याणकारी उपायों के माध्यम से सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल सफाई प्रक्रिया को समाप्त करना है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी अगले दिनों तेज बारिश का अनुमान है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में स्पेन ने अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरान टेरोस ने विजयी गोल किया। स्पेन दूसरी बार यह खिताब जीता है। और इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। लंदन के लॉर्ड्स में कल हुए मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 388 रन का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम 7 विकेट के नुकसान पर 360 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।